चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 87।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

कनाईकांसू हुदन चुरा हो जान्यांग तरुस मनुरुस तेला मंबर छिपात पंचेरान क्लेस्टर सरता मनी कातकान अंचा नान बांचिर बादांग नलम चाबांग पहानान एथलेट इंडिया धीराज बमार देवारा दान एथलीट रिमाजा कुमकुम मोहोद बरासिल मेरा मेडली एम्पास पारा नोमर बरागु चंपुरान रिकर्व दी पियाला दुनिया सरी का तेगा यंग बरलांसुंग दी अन टाल टाल टालिया तुर्की पसंगान इंडिया तरसे वो तांपेल गलीमांग देंगान मल आपुकन ज्वारा भरता हनान ओलंपियाड असल कोरिया सलतान वो ये चिंदान किम जे दोक देंगान स्कोर लीमा हिंगा सातू दिबाबाक फिनल तलम टूर्नामेंट पियाला दुनिया क्रिकेटी दुआपुलु पुत्री ई चेचे इंडिया मंगलाकान पाकिस्तान लिंगान सलिसी एनम पुलु एम्पात रन पड़ा पड़ता निगान ग्रुप ए दी एड बेस्टोन बर्मिंगम इंडिया यांग ममुकुल बोला लबी डुलू सतला मनंकान कान उंडियान मंचतान पर ओलेहान सरातुस तुजुपुलु रन दलाम जाता दुआ पुलु ओफर यांग तरसे दिया सुबगई तंगापान सुलुरु पमायान पाकिस्तान ब्राजील दिले मिस नासी देंगान टोटल पर ओलेहान सरातुस एन्नाम रन दलाम तुजु बिलास ओवर सहिंगा गगल मंचपाई टारगेट स्कोर लावन दीप्ति शर्मा दिनो वादकान सुबगई पमायान तरबाइक पर टांडिगान दमिकिया ला आखिर धारी बुलेटिन हारी इनी बड़ी कुतनिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आलिया।

युगांडा का फ्रांसिस धर्म स्लोवाकिया आकान बम्पर कुआत करतली बतान इंडिया यांग सवाकिन मंडलाम दिंगान ओरोपा माउपुन गीतुजु सरता मनुन जुकान कमिटमेंट तुंगु तुगु इंडिया उन्तक मम्पर लुआस चक्रवाला कमित्रान किता दिंगान बनुआ तुरसिबुद्दान विलाया लाइन्या इंडिया तेला बरलुआंग कालिक मनेगास्का पोसीसी न्या यंग जिलास मन मंगनाई परलुनिया देवलोक दान डिप्लोमासी उन्तुक मांग आखिरी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया जुका तेला मनेरू कान कपुरी हाथी न्या मंगनाई दारम पाक कॉन्फ्लिक्ट आसियावारा तरहताप नगारा नगारा ग्लोफल साउथ मने कान कान पंतिंग न्या कबिसान ने विगासी मललुई सलात हॉर्मुज प्रधानमंत्री मोदी तिवारी नीस उन्तुक मलाकोकन प्रतिमुगन बिलेट्रल दिंगन प्रेसिडेंट मैकरोन सतिबान्या दिबंदारा नीस पीएम मोदी दे संबोधिंगन हांगत ओले मंत्री पंडितिकान फ्रांसिस एडवर्ड जेफरी दान मंत्री रिसित दान अंतरिक्ष फ्रांसिस फिलिप बैप्टिस्ट सरता सेक्रेटरी जनरल प्रेफेक्टूर एल्पिस मेरीटाइम्स पैट्रिक एमोस एडल दान फिजाबाद तिंगी लाइनिया माशराकर इंडिया हादीदालाम जुमला बिसार उन्तुक मन्यामुद प्रधानमंत्री दी होटल प्रधानमंत्री मोदी दिसामुद दिंगन परतुंजुकान बुराया ओले पारस समनिया इंडिया दर ब्रांचेस प्रधानमंत्री मंबरीकन अप्रेसियासी के पारा डिस्पोरा इंडिया अदास कॉन्ट्रीब्यूसी वरेका दला मंपरात हुबुंगान इंडिया फ्रांचेस मुल्यो मनम बाइकान तिरिमकासी के पारा कम्युनिटास डिस्पोरा तास संबुतान हंगत यंग दिब्रीकान के पारा न्या धर्म सबुआ उंगोहान दी मीडिया सोशल प्रधानमंत्री मनेबुत मोमेंट तरसिबुत सुबगाई ससुआतु यंग बरकसान मोदी ममे कानकान बाबा मस्कीपुन देश पूरा इंडिया बरादा जाऊ दारिताना आई एकादान मरेगा देंगा इंडिया तत्ताप सांगात को आज प्रधानमंत्री मोदी दान फ्रांसिस प्रेसिडेंट फ्रांसिस मनेजाओ सुलुरु एस्पेक हुबुंगान बिलाट्रल इंडिया फ्रांसिस यंग देला दिन तिंगातकान से स्टेटस न्या मंजारी का मित्रान तुर्किस ग्लोबल खुसूस पाड़ा अवलता हुन इनी कदो पमिम पिम जगह मंबहास बरबागी इसु पंतिंग दि तिंगात रीजनल माउपुन ग्लोबल दिनीस कदुआ पमिम पिम रश्मिकान अचारा भारत इनोवेट्स यंग मंपर तिमुकान परुसहान इंतिसान स्टार्टअप इनोवेटिव तर्की मुका सरता परुसहान मॉडल वेंचुरा दारी इंडिया फ्रांसिस दन नगर नगर लाइन अचारा इन दि सिलंगारकान डाला रंकियान ताहुन इनोवासी इंडिया फ्रांसिस दान अचारा उंगुलान इनी मंपर कुआत कमित्रान इनोवासी यांग दी नमेस अंतारा कदुआ नगारा कहा दिदान प्रधानमंत्री बरसामा प्रेसिडेंट मैक्रोन दालाम अचारा इनी मोरूपकान सिंबल पंथिंग यांग मंचर मिनकान दालाम हुमुंगान बिलेट्रल दिविदांग टेक्नोलॉजी दान इनोवेस्टासी भारत इनोवेट्स मोरूपकान इनिशियाटिव तारिका मित्रान पंडितिकान इंडिया अचारा दिनीस मंगा दीदी सरातुस दुअपुलु इनोवेटर दारी हिमाबलास पर गुरुवान तिंगी दी इंडिया सरसलबी दारी लिमा रातुस इन्वेस्टर थर्मासो परोसहान कॉरपोरेट परोसहान मॉडल वंचुरा जे ए ओ क्लोफल दानपारा पमिमपिम इंडस्ट्री मंत्री लुआर नगरी डॉक्टर अजय शंकर मंत्री पटागंगा दान इंडस्ट्री पीयूष गोयल सरता सजुमला पजाबा तिंगी लाइनिया तुरुत मंगा दीदी अचारा तरसबुद अचारा इनी मंचाकुप टीका बिला सेक्टर उत्तमा सपर्ति कोम्पुतुसा तासी इतिंकात लांजो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अंतरिक्षा बायोटेक्नोलॉजी एनर्जी लायनान का सेहतान दान मनफुक्तुर कग्यतान इनी मनिरुति इकोसिस्टम इनोवासी दान टेक्नोलॉजी मंडलाम इंडिया यांग तुरुस बरकम्बांगान अचारा तरसबुद जुगा मनिरुति पलुवांग बारू बागी कमित्रान का लिमांगान अंतारा इकोसिस्टम इनोवासी इंडिया दान फ्रांसिस दिंगान फोकस पाड़ा पन के बांगान परसामा पर तुकरान टेक्नोलॉजी दान पर चपतान टेक्नोलॉजी बारो यांग सदां बड़के बांगान भारत इनोवेट्स दिरांग दिरान चांग उन्तुक मंग हुबुंगान पारा इनोवेटर इंस्टीट्यूसी पसरता दिंगान इनोवेटर परोसहान इनोवर्सिटास ऑर्गेनाइजासी पनलितियान सरता पमांकू कम पतिंगान पमरिंता गुना मंजदा की इन्वेस्टासी वालिडासी टेक्नोलॉजी पलुआंग पन गिवांगान बरसामा प्रोजेक्ट पंचुत तोहान दान
Kemitraan mana fokus sekaligus membuka jalan bagi ahli dan penirayaan teknologi aspek besar serta peningkatkan skala inovasi India. Setelah kunjungannya ke Nice, Perdana Menteri melanjutkan perjalanan ke Bratislava, Slovakia untuk melakukan kunjungannya ke negara ini merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Slovakia sejak negara tersebut meraih kemerdekaan pada tahun 1993. Bapak Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Slovakia Bapak Robert Fico dan melakukan pertemuan dengan Presiden Slovakia Peter Pellegrini. Perdana Menteri Modi juga akan berinteraksi dengan para pemimpin bisnis Slovakia. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Haryana.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता

0: संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत

0: संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन अनुकूलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी

0: अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Kamudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन और सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिसे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे।

0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पिलिगिरिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीको के साथ सूदमंद मुजाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वजीर आजम की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। तीन रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलाक़वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाक नोएडा बैन अलाक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
3: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in

0: से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। एनटीए ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब किसानों ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2 लाख करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्मसाज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकाने पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी की खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 0111-233-1048, 0111-237-1717, 0111-237-1076।

0: ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों, मुहक्किकीन और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली, ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमरीका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वजीर आजम मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नदीम अहमद खां का गाया राग अलहिया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आपने सुना नदीम अहमद खां का गाया राग अलहिया बिलावल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अवर गेस्ट। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है। ये दिन हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। आइए आज इस विशेष अवसर पर सुनते हैं श्री ज्ञानेंद्र अवाना से बुजुर्गों के अधिकार पर बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं श्री नितेश अरोड़ा।

0: First thing which I would suggest, that don't tolerate any abuse in the name of affection or love with the children or no. Because if you tolerate one thing today, tomorrow it will be more aggravated. So from the beginning itself, inform the police. You have all the rights. Legal provisions are there. And don't allow to happen that.
1: I think that is the best mantra. You have to take care of your own self and the rest will take care of you. So don't let any abuser to transgress your rights and things will be very fine. Mr. Ganender Awanaji, thank you so very much for sparing your time for today's Our Guest.
0: Thank you for having me. And in fact, I am very happy that I am conveying these things to the people who are generally deprived of such information.
1: Thank you. Thank you so much.
2: You were listening to the weekly program Our Guest, that is broadcast every Monday at 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आवर गेस्ट। इसमें हमने आज आपको सुनवाया एन इंटरेक्शन विद ज्ञानेंद्र आवाना ऑन राइट्स ऑफ द एल्डरली पीपल। आपसे बात कर रहे थे नितिश अरोड़ा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है और आज इस विशेष अवसर पर हमारे कार्यक्रम आवर गेस्ट में हमने बात की ज्ञानेंद्र आवाना से। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, पंजाबी कार्यक्रम। समाचारों का समय रहेगा दिन में 11 बजे और 11:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुन सकेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अन्य कार्यक्रमों में प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 11:10 पर हमारी बेड़ियां और इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी सुना जा सकता है 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे राग बहादुरी तोड़ी। कलाकार होंगे जयाश्री पटनाकर। महिला कार्यक्रम का समय रहेगा घर आंगन दिन में 12:10 पर। दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे हिंदी फिल्म सुजाता के कुछ गीत। समाचार सुने जा सकते हैं दिन में 2 बजे हिंदी में और 2:15 पर अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा। एक ही कलाकार आज इस कार्यक्रम में आमिर खान पर फिल्माए कुछ गीतों का संकलन होगा जिसे आप सुन सकते हैं। समय रहेगा दिन में 2:30 पर। उर्दू मजलिस कार्यक्रम कहकशा सुना जा सकता है दिन में 3:30 पर। 4:15 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी 5:10 पर और हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी होगा 5:30 पर। तो ये थे आज हमारे दिन में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 9:30 हुए जाते हैं। ये वक्त है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

0: देखना यानी दीदन।
1: हम जा रहे थे।
0: मौ मी राफ्तीम।
1: वह क्या बेच रहा था।
0: बेचना यानी फुरूख्तन।
1: बेच रहा था मी फुरूख्त।
0: क्या यानी ची।
1: वह क्या बेच रहा था। ऊची मी फुरूख्त।
0: वह आम बेच रहा था। आम यानी अंबे। उ अंबे मी फुरूख्त।
1: देर हो रही थी।
0: दीर मी शोत।
1: मिठाई बन रही थी।
0: शीरीनी तहये मी शोत।
1: बन रही थी तहये मी शोत। मिठाई शीरीनी।
0: मैं पढ़ता था।
1: मैं मी खौंदम।
0: हम पढ़ते थे।
1: मौ मी खौंदीम।
0: मैं पढ़ रहा था।
1: मैं मी खौंदम।
0: हम पढ़ रहे थे।
1: मा मी खौंदीम।
0: तू पढ़ता था।
1: तुम ही खौंदी।
0: तुम पढ़ते थे।
1: शमा मी खौंदीद।
0: तू पढ़ रहा था।
1: तुम ही खौंदी।
0: तुम पढ़ रहे थे। शमा मी खौंदीद।
1: वह पढ़ता था। उमी खौंद।
0: वे पढ़ते थे।
1: ईशान मी खौंदांत।
0: वे पढ़ रहा था। उमी खौंद।
1: वे पढ़ रहे थे। ईशान मी खौंदांत।
0: हाल बियाइम बे मुअन्नस। इन बुद मुज़क्कर।
1: मैं पढ़ती थी।
0: मैं मी खौंदाम।
1: हम पढ़ती थी।
0: मौ मी खौंदीम।
1: मैं पढ़ रही थी।
0: मैं मी खौंदाम।
1: हम पढ़ रही थी।
0: मौ मी खौंदीम।
1: तू पढ़ती थी। तुम ही खौंदी।
0: तुम पढ़ती थी।
1: शुमा मी खौंदीद।
0: तुम पढ़ रही थी।
1: तू पढ़ रही थी।
0: बेबख्शी।
1: तुम ही खौंदी।
0: तुम पढ़ रही थी।
1: शुमा मी खौंदीद।
0: वह पढ़ती थी।
1: ऊ मी खौंद।
0: वे पढ़ती थी।
1: ईशान मी खौंदांत।
0: वह पढ़ रही थी।
1: ऊ मी खौंद।
0: वे पढ़ रही थी।
1: ईशान मी खौंदांद।
0: हमीन तोर मिसाल हो ये दीगरीस्त।
1: मैं पढ़ा करता था।
0: मैं पढ़ा करती थी।
1: हम पढ़ा करते थे।
0: हम पढ़ा करती थी।
1: तू पढ़ा करता था।
0: तू पढ़ा करती थी।
1: तुम पढ़ा करते थे।
0: तुम पढ़ा करती थी।
1: वे पढ़ा करता था।
0: वे पढ़ा करती थी।
1: वे पढ़ा करते थे। वे पढ़ा करती थी।
0: इन शोद बयान उमी खांद या मिसाल है ये मुख्तलिफ बे ज़बान हिंदी दर माउनी इन जुमले फारसी के चंदीन मानी दौरद।
1: اینجا درس بیستم شنوندگان عزیز به زبان هندی تمام میکنیم تا درس آینده خدا حافظ شما.
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: سپاتلایت This is Akashwani. In the program Spotlight, we now bring you a discussion on Prime Minister's visit to France, strengthening bilateral ties. The participants are Gulshan Sachdeva, international affairs expert, and Sarabjit Kaur, anchor.
4: Good evening, listeners, and welcome to today's edition of Spotlight. Today, we focus on Prime Minister Narendra Modi's visit to France, a visit that highlights the growing strength of one of India's most trusted strategic partnerships. India and France have shared a relationship built on mutual trust, democratic values and cooperation across diverse sectors such as defense, trade, space, technology, education and climate action. To understand this better, we are fortunate to having been able to connect with Mr. Gulshan Sachdeva, international affairs expert. Mr. Gulshan, welcome to the program.
5: Thank you for the invitation.
4: Mr. Gulshan, to start with, we'd like to understand from you, India and France have often been, you know, described as

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिसो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

0: शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as

0: London.
1: कभी आपने गौर किया है कि घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी असल रौनक आवाजों से होती है। रसोई में होती चहल पहल, किसी के हंसने की आवाज़, बच्चों की शरारतें, बड़ों की सीख और दिन भर के अनुभवों को साझा करती छोटी छोटी बातें, यही तो हैं वो धागे जो एक घर को घर बनाते हैं। इन्हीं आवाज़ों के बीच यादें बनती हैं, रिश्ते गहराते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति बुरी और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमसे जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी, और दोपहर के 12:10 से 1 बजे तक के इन 50 मिनटों में हम आपके साथ रहेंगे।

के साथ आपके दिन का एक सुखद हिस्सा बने। आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें लिख सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। तो आइए इस दोपहर को थोड़ा और आत्मीय, थोड़ा और रोचक बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का घर आंगन कार्यक्रम। वक्त फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और टाल भी दी है। कबीर दास जी ने 500 साल पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यही है कबीर की चेतावनी। आज के ज़माने में तो टालना और भी आसान हो गया है, कई बहाने हैं, और हमारे सपने, हमारे रिश्ते, हमारे ज़रूरी काम सब कल पर टंगे रह जाते हैं। कबीर

इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है और वो है अब। पूरा काम नहीं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बस शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। तो आज इस शो के बाद एक काम जो आप टालते आ रहे हैं वो कर डालिए, हमें मेल भेजिए और हमें बिना देर किए बताइए, और हम भी आपको बिना टाले एक प्यारा सा गीत सुनवाई देते हैं।

आशा भोसले को अभी आप वक्त फिल्म में सुन रहे थे। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम अक्सर घर की चार दीवारी में छुपा देते हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है लेकिन हम बात ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि वो हाथ जिसने आपको पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ को सहारे की ज़रूरत है। आज 15 जून है और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस दिन को इसलिए मान्यता दी क्योंकि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये दुर्व्यवहार होता क्यों है? दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट नहीं होता, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कई रूपों में होता है। किसी बुजुर्ग माँ को घर के कोने में बिठा देना, उसकी बात न सुनना, ये भी दुर्व्यवहार है। बुजुर्ग पिता की पेंशन पर कब्जा कर लेना, ये भी दुर्व्यवहार है। उन्हें बोझ समझना, उनकी दवाइयाँ न देना, उन्हें अकेलेपन में छोड़ देना, ये सब उसी के रूप हैं। और सबसे दुखद बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का शिकार होता है, और अधिकतर मामलों में ये दुर्व्यवहार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का कोई अपना ही होता है। 50% बुजुर्ग किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और इनमें से अधिकांश इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, बेटे की बदनामी होगी। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है। वो बुजुर्ग जो अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 शुरू की है, जो पूरी तरह मुफ्त और गोपनीय है। हेल्पलाइन एक बार फिर नोट कर लीजिए, 1-4-5-6-7।

तो दोस्तों, इस दिन का संदेश बहुत सीधा है। अपने घर के बुजुर्ग को देखिए, सुनिए, समझिए, उनकी थकी हुई आंखों में झांकिए, शायद वो कुछ कहना चाहते हों जो आपने आज तक नहीं सुना। जिस पेड़ की छांव में आप पले बड़े हैं, उस पेड़ को अब आपकी देखभाल चाहिए। आज के दिन बस एक काम कीजिए, अपने घर के बुजुर्ग के पास जाइए, उनका हाथ थामिए, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, और सच में इस बार उनकी सुनिए, क्योंकि जो आदर आज हम उन्हें दे रहे हैं, वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी सीखती है। ख्याल रखिए अपना भी और अपने बुजुर्गों का भी।

दूरियां फिल्म में अभी आप भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौड़वाल को सुन रहे थे। श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसी विरासत की बात करना चाहती हूँ जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के भागदौड़ भरे जमाने में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सुबह की पहली किरण, खुली हवा और बस कुछ पलों की शांति, यही तो है योग का असली स्वागत। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। जब हम हर सुबह 20 मिनट भी प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक रिपोर्ट बताती है कि नियमित योग से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि योग हमें खुद से मिलवाता है, उस शांत कोने से जो हमारे भीतर है, लेकिन शोर और तनाव में दब गया है। यदि आप योग प्रशिक्षक हैं तो आप योग से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। लेकिन योग का काम सिर्फ चटाई तक सीमित नहीं है, ये समाज को भी बदलता है। जब एक इंसान भीतर से शांत होता है तो वह घर में प्रेम से बोलता है, दफ्तर में धैर्य रखता है और समाज में सहयोग की भावना लेकर चलता है। सोचिए, अगर एक मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर सुबह पार्क में योग करें तो न सिर्फ सेहत बनेगी बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज स्कूलों, जेलों, अस्पतालों और कॉरपोरेट दफ्तरों तक में योग अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बनाता है। तो दोस्तों, बस एक संकल्प लीजिए, कल से नहीं, आज से, अभी से 5 मिनट का ही सही या 25 मिनट का ही सही, बस शुरुआत कीजिए योग से। क्योंकि योग कोई धर्म नहीं, कोई फैशन नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से सुंदर बनाती है। जैसा हमारे ऋषियों ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो श्रोताओं, क्या है योग करने के सरल नियम, कैसे किया जा सकता है सरलता से योग, आइए जानते हैं योग प्रशिक्षक देविका से। इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: घर आंगन के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। चैनल है आपका अपना आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम वही जाना पहचाना घर आंगन, जिसमें होती है घर की बातें और घर से जुड़े कई मुद्दों की बातें। तो अगर हम कहें कि आप अपने घर में खुशियां समेटना चाहते हैं, बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे जो जरूरी है वो है स्वस्थ रहना। और अगर हम स्वास्थ्य की बातें करें तो बहुत जो जरूरी चीज है वो है व्यायाम करना, तो चाहे वो जिम में जाके हो चाहे बाहर दौड़ भाग के हो। लेकिन एक जो स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है योग का सहारा लेना, योग से जुड़ना। तो योग का अर्थ ही है जुड़ना। जब आपका मन प्राण आत्मा एकाकार होते हैं तो होता है योग। तो योग के बारे में और जानने के लिए और योग द्वारा हम किस प्रकार अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को, जो कि योग की अध्यापिका है, योग सिखाती हैं और काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है। देविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हरिओम सभी को। मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है, मैं योग शिक्षक हूँ, साथ ही साथ एक योगा विद्यार्थी भी हूँ। क्योंकि योग ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कुछ सर्टिफिकेट्स में समेट सकते हैं या कुछ हिस्सों में समेट कर पूरा सीख सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है योग, इतनी बड़ी चीज है उसको सीखने और समझने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि योग है क्या। योग एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, योग को आप एक ऐसा मार्ग कह सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी पूरी जिंदगी चलना सीख सकते। सुबह उठने से लेके आपके रात में सोने तक की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, पूरे दिन की आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपके शरीर का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति को समझिए कि वो आपके शरीर से कैसे जुड़ा है, योगा से उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। योगा इज टू बियॉन्ड देन एक्सरसाइज। योगा में आपका मन, आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी संस्कृति, आपका नेचर, सब कुछ आता है।
0: यानी कि पूरा एक जो जीवन जीने की शैली है, जो हमारा कर्म करने का कौशल है, मैं ये कहूँ कि ये जीवन यापन कैसे करना चाहिए, ये जो हमें सिखाता है वो है योग जी। क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन और जो घर की जो धुरी होती है तो देविका जी वो सबसे पहले होती है घर की महिला। हाँ, तो उसका स्वास्थ्य और उसका मन बिल्कुल सही रहना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्यों ना उसी के बारे में बात की जाए। तो हम देखते हैं कि जो आजकल की महिलाएं हैं, चाहे वो घर में काम कर रही हो चाहे बाहर काम कर रही हो, उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि वो काम से थोड़ा सा अपने आप को कैसे हटा पाए कि वो वापस योग से जुड़े या अपने स्वास्थ्य को वो थोड़ा सा देखभाल में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप क्या कहेंगी, कैसा होना चाहिए उनका एक लाइफस्टाइल, वो कैसे समय निकालें अपने लिए और योग से जुड़े ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे।
1: आपका शरीर सही है तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपना अच्छे से काम अपने ऑफिस में कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मैम टाइम नहीं होता। 90%
0: तो समय कैसे निकाले।
1: राइट, समय की परेशानी सबसे ज्यादा होती है वुमेन्स के साथ, इफ दे आर वर्किंग और इफ दे आर नॉट वर्किंग। घर में भी बहुत काम होता है, स्टिल वो गिना नहीं जाता, बट उसमें बहुत काम होता है। सोने के टाइम पे आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा निकाल सकते हैं।
0: पर ऐसे नहीं कहा जाता देविका जी कि सोते हुए, थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है सुनते कि खाना खाने के बाद कैसे व्यायाम करें हम।
1: बिल्कुल, सोने के बाद टाइम निकालने से मतलब ये है कि उस टाइम आप व्यायाम तो नहीं करेंगे, लेकिन सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज योगा की है, प्राणायाम का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट योग निद्रा का है, जिसको करने के बाद आपके पूरे दिन की थकानों आधे घंटे में मिट जाएगी।
0: हाँ, क्योंकि निद्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो नींद तो औरतों की शायद ही पूरी होती है, मुझे लगता है औरतें क्या किसी भी घर में अगर हम बात करें, आजकल बच्चे भी देर देर तक जाग कर काम कर रहे होते हैं, तो ये नींद की कमी तो सभी जगह है। पर ये अच्छी बात बता रही है, इसके बारे में और बताएं।
1: तो पूरे दिन का अगर आपका दिनचर्या ऐसे है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट सोने से पहले आप 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो वो पूरे दिन की थकान मिटाने वाली नींद आपको मिल जाएगी। सुबह आप एकदम रिफ्रेश होके उठेंगे।

0: प्राणायाम कौन सा करना
1: उसके लिए
0: चाहिए?
1: आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में सब अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। प्रॉपर प्रतिक्रिया के साथ उसको नासाग्र मुद्रा के साथ आप कर सकते हैं। 10 to 15 रेपिटेशन आप उसके करेंगे, लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ।
0: अच्छा।
1: आपने कभी देखा होगा पार्क में कई बार लोग ऐसे करते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं एंड दे आर कीप प्रैक्टिसिंग नासाग्र मुद्रा। प्राणायाम का सबसे बड़ा एक ही रीजन है, वो प्राणायाम आपके शरीर बेनिफिशियल होगा जब आपकी अवेयरनेस उसके साथ होगी,
0: यानी कि पूरा जुड़ाव होना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर की वो श्वास कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है। आपको A to Z एक्टिविटी आपकी बॉडी की फील होनी चाहिए। आप किस तरह की सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग प्राणायाम, आप जब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं तो राइट से आप इनहेल कर रहे हैं या उल्टा छोड़ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्कल कम्प्लीट हो रहा है कि नहीं।
0: यानी ध्यान से तो प्राणायाम करें। और खाना खाने के कितने घंटे बाद हम कर
1: कोशिश
0: सकते
1: कीजिए
0: हैं?
1: आप आधे घंटे से एक घंटे का डिफरेंस तो रखिए, अगर बिल्कुल नहीं रख पाते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे का तो रखिए, 20-25 मिनट का डिफरेंस रख के फिर आप प्राणायाम तो कर सकते हैं। व्यायाम करने के लिए अगर आपने पूरा खाना खाया है, आपका अपने
0: वैसे तो कहते
1: लिया
0: हैं खाना पचने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर हम व्यायाम की अगर
1: पूरा
0: बात
1: खाना
0: करते
1: लिया
0: हैं।
1: है तो फिर आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। पर हाँ, आपने सिर्फ डिनर किया है,
0: हल्का खाना खाया
1: अगेन कहते हैं कि डिनर में कम खाना चाहिए, तो डिनर आपका डिपेंड करता है। बहुत फैमिलीज अब ऐसी हैं कि पूरे दिन का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एंड में ही रात में ही सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, तब वो उल्टा हैवी खाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप ऐसी कंडीशन में हैं, तो पहले आप अपने दिनचर्या को सुधारिए, पहले आप अपना डाइट को आप मेंटेन कीजिए, फिर आप धीरे धीरे अपने व्यायाम को भी शिफ्ट कर सकते हैं।
0: तो अगर हम ये मानते हैं कि उसने 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया, तो 1.5-2 घंटे बाद अगर वो चाहें तो रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 जो आप बता रही हैं प्राणायाम और योग निंद्रा, मैं चाह रही थी कि उसके बारे में अगर आप बताएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है।
1: इवन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। सही तरीके से सोने का तरीका समझ सकते हैं कि आपकी अवेयरनेस आपके सोते टाइम भी आपके साथ हो, उसे आप कच्ची नींद भी नहीं कहेंगे कि जैसे किसी ने भी एकदम से आपको टच किया या आपको आवाज लगाई तो आप झटके से उठ गए, नहीं। अवेयरनेस से मेरा कहने का मतलब था सोते समय आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, आप अपने मेंटल थॉट्स पर ध्यान दीजिए, किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं रखना है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है।
0: कई बार ऐसा होता है ना, नींद आती है लेकिन हम सवेरे जो है वो ताजापन महसूस नहीं करते, हमें लगता है कि बड़ा रात को बहुत से सपने आए, हम कसमसाते रहे, परेशान रहे, ढंग से नींद नहीं आई, अभी भी वो तनाव लेकर उठ रहे हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रही हैं कि नींद हो पर भरपूर हो।
1: बिल्कुल, कहते हैं पूरे दिन में एक बार सोचे कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पर उसको सोच के वहीं छोड़ दीजिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छी और शांत नींद आए, हैप्पीली सोएं। तो उसके लिए आप 5 मिनट भी अगर आप प्राणायाम करके सोते हैं, फिर आप लेटने के बाद शवासन में लेटकर फोन नहीं चलाना है, तो उससे आपको बहुत शांत और अच्छी नींद 5 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि उनको नींद बहुत देर में आती है, वो नहीं होगा, आपको टाइम से अच्छी नींद आएगी तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे।
0: जी, और जब हम ताजगी की बात करते हैं तो और मन शांत की बात करते हैं तो संगीत भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है सुनना, तो क्यों ना योग की तो बातें करेंगे आगे, लेकिन चलते चलते एक गीत सुन लेते हैं यहाँ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मधुबन

0: तो अभी हम बात कर रहे थे जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए. आपने बताया कि योग निद्रा और बातचीत की, कि इवन हम सोने से पहले भी चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद. इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं. देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद.

श्रोताओं, अभी आप योग प्रशिक्षक देविका से बातचीत सुन रहे थे। रश्मि कुकरेती जी बातचीत कर रही थी इनसे योग के बारे में, सरल बातें सरल नियम आप जान रहे थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कि जो आपके घर की चार दीवारी के भीतर हर वक्त चल रहा है लेकिन आप उसे देख नहीं सकती। जी हाँ, वो आपके घर का वाईफाई है। आज के दौर में वाईफाई सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं, बल्कि इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है, आपकी तस्वीरें जुड़ी हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है और आपकी निजी जानकारियां भी इससे जुड़ी हैं। भारत में साइबर क्राइम के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अधिकतर साइबर हमले असुरक्षित होम नेटवर्क के जरिए होते हैं, यानी आपके घर में जो वाईफाई लगा है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर के वाईफाई को सुरक्षित कैसे बनाएं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है पासवर्ड। दोस्तों, अगर आपके राउटर का पासवर्ड अभी भी 1234567 है और आपका नाम है या आपकी जन्मतिथि है, तो समझ लीजिए आपका दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड रखिए जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर्स हों। दूसरी बात, अपने राउटर की सेटिंग में जाकर नेटवर्क का नाम यानी SSID बदल दीजिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम हैकर्स को आसानी से बता देता है कि किस कंपनी का राउटर है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। तीसरी बात, अपने राउटर में VPA3 या WPA2 एनक्रिप्शन ज़रूर चालू रखिए, क्योंकि ये आपके डेटा को एक सुरक्षा कवच देता है। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी उपायों की। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्हें आपका मुख्य वाईफाई पासवर्ड देने की बजाय आप राउटर में गेस्ट नेटवर्क यानी अतिथि नेटवर्क चालू कीजिए। ये सुविधा लगभग आजकल हर आधुनिक राउटर में होती ही है और इससे आपका मुख्य नेटवर्क जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हर 3 महीने या 6 महीने में अपने वाईफाई का पासवर्ड बदलने की आदत डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि अपने राउटर का फर्मवेयर यानी उसका सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि कंपनियां इन अपडेट में सुरक्षा की कमियां दूर करती हैं। तो दोस्तों, घर का वाईफाई सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना घर का दरवाज़ा बंद रखना। डिजिटल ज़माने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी निजी

जानकारियां हैं और उनकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इस बात को समझिए। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को साइबर खतरों से बचा सकती है। तो संजो रखिए अपने डिजिटल घर को।

और श्रोताओं, अब समय है आपकी कुछ मेल्स पढ़ने का। एक मेल अभी हमारे पास आई है, उग्रसेन यादव जी ने लिखी है नई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि आपको मेरा दिल से सप्रेम नमस्कार। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो एक तरह से एक ज्ञान की किताब हैं, और आज की जेनरेशन चाहे तो आधे से ज़्यादा जीवन जीने की कला उनसे जान सकती है, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से। जीवन आसान हो जाएगा अगर इनकी बातों और इनके दिल की बताए हुए गुरों पर गौर किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसके साथ ही हमें एक मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का। एक मेल हमको लिखा है गौरी शंकर जी ने, और ये लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेल हमें राजू अग्रवाल जी ने लिखा है, ये भी बुज़ुर्गों की बात पर लिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने बताया था कि बुज़ुर्गों से दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस है। तो इन्होंने लिखा है कि जो बुज़ुर्गों के लिए अगर कुछ बच्चे करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बुज़ुर्गों के घर में मार्बल ना लगाएं, क्योंकि इससे फिसलने का डर रहता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। तो प्रोग्राम तो हमेशा अच्छा होता ही है, बस ये एक प्रार्थना है जो हमारी आप सब तक सुनवा दें। और एक हमें गौरी शंकर जी ने एक मेल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब घर की जिम्मेदारियां बड़े ही निभाते हैं तो कामयाबी भी मिलती है, और इसीलिए बच्चों को बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। और अब समय समाप्ति का है, तो श्रुतिपुरी को आज का घर आंगन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 당근.
1: 아빠의 아스티트와 아빠의 व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन.

0: और के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लुचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम

0: लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
2: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
3: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.
4: This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks since last year we've maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it'll have an impact because this year his income will be stressed out.
3: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today. Following the announcement of a peace deal between the United States and Iran, the Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आज की इस सुरीली दोपहर में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म की जिसने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर किया है। एक ऐसी संवेदनशील फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा की एक अलग ही कहानी को रचा है। जी हाँ, आज प्रोग्राम एक ही फिल्म में एक ऐसी ही फिल्म जो कि 1959 में रिलीज हुई थी लेकर आई हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप भी मेरे साथ इस सफर में जुड़ सकते हैं अपने संदेशों के जरिए। और आपको पता है संदेश भेजने का माध्यम क्या है? मेल। मेल के लिए हमारी मेल आईडी है ip radio delhi@gmail.com। इस माध्यम से आप मेरे इस सफर के हम सफर बन सकते हैं।

तो आज आप भी सुन लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं 1959 में बनी एक हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म जिसका नाम है सुजाता। निर्देशन बिमल रॉय ने किया था, जिसमें नजर आई नूतन, सुनील दत्त, साथ ही शशिकला, ललिता पवार, सुलोचना लटकर, तरुण बोस ने भी सहायक भूमिकाएं निभाई। सुबोध घोष की इसी नाम की बंगाली लघु कहानी पर आधारित फिल्म थी और ये फिल्म भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। संगीत जो अभी आपने सुना इस गीत के जरिए, ये SD बर्मन साहब का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने 1960 के कान फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को शामिल किया गया था।

जाने वाले बिमल रॉय सुजाता के माध्यम से उस समाज के पाखंड की आलोचना करते हैं जो लोकतंत्र और प्रगति का ढोंग करते हुए भी शुद्धता और अपवित्रता की पुरातन धारणाओं से चिपटा हुआ है।

सुजाता ने उस दौर में जाति भेद और छुआछूत जैसी संवेदनशील विषय को बड़े ही साहस और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी अपने समय में थी। नूतन इस फिल्म में सुजाता के रूप में नजर आई थी, सुनील दत्त अधीर के रूप में नजर आए थे, शशिकला ने रामा चौधरी का किरदार निभाया था, ललिता पमार ने गिरिवार का किरदार निभाया था, वहीं उपेंद्र चौधरी बने थे तरुण बोस, चारुमती चौधरी के रूप में नजर आए थे सुलोचना लाटकर, और असित सेन जो कि पंडित भवानी शंकर शर्मा के रूप में थे, और इसके साथ ही कई सारे ऐसे छोटे छोटे कलाकार थे जिनके झोली में जो भी किरदार आया उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उस किरदार को निभाया था। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की, लेकिन उससे पहले तलत महमूद की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो शायद आप सबकी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो उसको सुनते हैं।

फिल्म सुजाता। कहानी है एक अनाथ बच्ची सुजाता की, जिसे एक उच्च जाति का परिवार यानी कि ब्राह्मण दंपति उपेन और चारू, ये इनका पालन पोषण करते हैं। परिवार उसे प्यार तो देता है, लेकिन उसके अछूत जन की सच्चाई हमेशा उसके और उसके परिवार के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह से बनी रहती है। समय के साथ सुजाता बड़ी होती है और आदर्शवादी युवक अधीर उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन समाज की जातिगत सोच इस रिश्ते के सामने खड़ी हो जाती है और अंत में एक ऐसी घटना घटती है जब सुजाता का रक्त उसकी पालक माँ की जान बचाता है। तभी परिवार को एहसास होता है कि इंसानियत किसी जाति से बड़ी होती है।

आपको बता दें कि निर्देशक बिमल रॉय सामाजिक मुद्दों पर यथार्थवादी फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। सुजाता उनकी सबसे संवेदनशील फिल्मों में मानी जाती है। फिल्में नूतन के अभिनय की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये फिल्म 1960 के कानन फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित गोल्डन पाम के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची फिल्म उस दौर में भारतीय फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तक जो पहुंचना था वो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन सुजाता को इसमें मौका मिला जाने के लिए और इस तरीके से भारत का मान भी बढ़ा था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बिमल रॉय ने जीता था। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार नूतन की झोली में गया था। सर्वश्रेष्ठ कहानी सुबोध घोष के पास गया था और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तृतीय यानी कि तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान फिल्म सुजाता ने पाया था। एक कहानी जिसने बिमल रॉय को झकझोर दिया था। निर्देशक बिमल रॉय ने जब ये कहानी सुजाता पढ़ी थी तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे फिल्म के रूप में बनाने का निश्चय किया था। उस दौर में छुआछूत जैसे विषय पर फिल्म बनाना काफ़ी साहस का काम था। नूतन जो बहुत ही खूबसूरत लगी थी और उनकी एक जो ग्लैमरस भूमिका थी उससे हटकर उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल सीधी सादी महिला का किरदार निभाया जो कि दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह उस किरदार ने अपनी जगह बना ली थी। और कहा जाता है कि विमल रॉय चाहते थे कि दर्शक नूतन की सुंदरता नहीं बल्कि उनके चेहरे के भाव और अभिनय देखें। इस तलत महमूद जी की आवाज में जो गीत हमने आपको सुनवाया था जलते हैं जिसके लिए, इस गीत को पहले सुनने में तलत महमूद साहब को ये गीत इतना पसंद नहीं आया था, जब एसडी बर्मन साहब ने लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि ये गीत फिल्म की पहचान बनेगा और उसके बाद तलत साहब इस गीत को गाने के लिए राजी हुए और हुआ भी ऐसा ही कि ये गीत फिल्म की पहचान बन गया। एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो सुनील दत्त साहब का किरदार था अधीर का, वो बहुत उन्होंने सादगी के साथ निभाया। फिल्म में उनके चरित्र उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उसको चुनौती देने वाला था और उस दौर के नायकों के लिए ये एक अलग तरीके की भूमिकाएं थी और सुनील दत्त साहब इसमें 100 में से 100 मार्क्स लेने में सफल रहे।

आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच गए हैं और वक्त है उन संदेशों को हम शामिल कर लें। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। इंदिरानगर भबरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश अजीत भापसर जी का आया हुआ है, जो कि प्रमीला भापसर और जेमिन भापसर सनी के साथ बीरन गांव गुजरात से जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन जी, पहांदा, पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमल अनेजा जी हमें सुन रहे हैं और मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी, कृष्णा, पीहू, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रही मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। ये संदेश भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, चंपा जी का आया हुआ है। नीतीश कुमार देवानगंज जी का एक और पलारी से संदेश हम तक पहुंचा है। ये अगला संदेश कभी रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार डोली, बेबी पूजा का आया है। संजय कुमार साहू जी पोठियाल कला दुर्ग से प्रोग्राम को सुन रहे हैं और ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठावाड़ से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वेश और इनके ढेर सारे दोस्त। बबलेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डैडी पवार मनीष जी के साथ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और बबलेश जी आपने भी बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी हमसे शेयर की है, लेकिन वक्त की कमी है। और इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम जी का संदेश है। भटिंगखेड़ा पंजाब से मिंजू टॉमस, पिंकी लवली, आरती जी हैं। गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम इंदिरा जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से पूनम गंगनेजा जी हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल सोपान जी जुड़े हुए हैं। समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकू जी हैं। और ये संदेश हमारे पास सुरेश जागव, अनिता जी का आया है। नेहरू चौक पैठण से, संबलपुर काकेर से फागुन राम, ज्योति ओजस्वी जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी जुड़े हुए हैं। गंज डुंडवारा से हमारे साथ शमशुल कमर राही जी, बहुत दिनों के बाद आपका संदेश आया है, शुक्रिया आपका। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजीत छिंदा, जसवीर जस्सी जी हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम जी जुड़े हुए हैं। राजू मिगलानी जी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू के साथ दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़े हुए हैं। बीरन गांव गुजरात से अजीत कुमार भापसर जी हमारे साथ हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी दतरेंगी से हमारे साथ हैं। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र, मनोज और हिमांशु सुथार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर से हमारे साथ हैं। और नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत और इनके ढेर सारे दोस्त हमारे साथ हैं। गांव पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार और आदर्श सार्थक जी हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। अगला संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान और परिवार के सभी सदस्य हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल

परिहार जी हमारे साथ है, सुदर्शन मुखी, नीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है बड़ा बम चौक खंडवा से बमता संजय बेबी किट्टू जी का। अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मधुम नायक जी के साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। शायद कुछ और संदेश भी हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ बसंत कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, शिवानी कुमार साहू मुन्ना ये पीहरा बाजार झुमरी तिलैया से। और उसके बाद अगला संदेश पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरब ज्योति गुरमत मनु जी का है। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा जी हैं। कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ पिपरिया से दीपा रिमझिम गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए हैं। पटियाला रोज गंज डुंडवारा से हमारे साथ एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी आराध्या हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बराती सलावा में सलावाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतवार से एल नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में एटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सलवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में सलवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम मोदी को सलवाकिया के उनके हम मनसब की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और सलवाकिया के रिश्तों को मजीद उसत देने और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के नए इम्कान तलाश करने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम मोदी सदर पीटर पिल्लीगेरिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद सलवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वह सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगेरिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीको के साथ सूदमंद मुजाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में सलवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का यह पहला दौरा है। वजीर आजम का यह दौरा पिछले साल अप्रैल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सलवाकिया के दौरे और सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगेरिनी के रवां साल फरवरी में भारत में मुनाकिदा एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत के बाद हो रहा है। यह दौरा तिजारत, सरमायाकारी, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और सलवाकिया के दोतरफा ताल्लुकात को मजीद

0: ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में संगीन इक्तिसादी मुजमरात मुरतब हुए हैं और कई मुल्कों में लोगों की अमवात हुई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रूकावट आमदोरफ्त हो सकेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि मुल्क के मुतवसित तबके ने बेशुमार तरीकों से मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा किया है और एनडीए सरकार उनकी उमंगों की तकमील के लिए काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान हुक्मरानी में आम शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद है और मौसम के एतबार से एल नीनो के असरात के बावजूद गजाई अशिया की कोई किल्लत नहीं होगी। आज नई दिल्ली में माइंड माइंड सरबरा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की बारिश नॉर्मल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में वाक़े नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं, जो मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम संग मील है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के एक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 1-5 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन के खिलाड़ियों ने वक्फे के बाद के खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा और आसानी से जीत हासिल की। आज के दिगर मैचों में अमेरिका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी बराती सलवा में सलवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबराह इजलास फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम ने मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतबार से नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. Details from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend

0: ने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
0: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इस

0: बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार का। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज का ये आधा घंटा समर्पित है बॉलीवुड के उस अभिनेता, उस कलाकार को जिन्हें लोग प्यार से मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, जिन्होंने न केवल अभिनय में बल्कि निर्देशन, प्रोडक्शन और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सोच को यानी कि हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं इस फिल्मी सफर को रोचक किस्सों, दिलचस्प किस्सों और यादगार नगमों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ। लेकिन उससे पहले रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। जल्दी से फोन उठाएं, गेस करें और बताएं कि हम आज किस कलाकार के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट हम दे सकते हैं आपको, छोटा सा हिंट। ये है, हिंट दूं, आसान दूं या मुश्किल दूं? चलिए आसान मुश्किल आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं कि वो है उनका एक फिल्म का डायलॉग बता देते हैं। काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। ऑल इज वेल, दूसरा भी हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ, तो हिंट आपको मिल चुके हैं, जल्दी से हमें

फटाफट मैसेज कीजिए और हमें बताइए कि कौन है आज का हमारा कलाकार, और जो हमें सबसे पहले गेस करके संदेश भेजेगा, आप जानते ही हैं, वो हमारे इस आज के लाइव प्रोग्राम का फेवरेट श्रोता होगा। तो जल्दी से फोन उठाएं, मैसेज करें और हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी हमें बताएं।

ईमेल आईडी, यस, हमारा ईमेल आईडी क्या है? iprdelhi@gmail.com iprdelhi@gmail.com जल्दी से हमें मैसेज कीजिए।

जी हाँ, क्या बात है। ढेरों मैसेजेस के साथ आप सभी का प्यार हम तक पहुंच रहा है, इसके लिए रैना तवर का तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। और आज सब जिसने भी गेस्ट किया है उनका नाम हम बता देते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन और उषा मोहन जी, आपको आज का हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का इनाम।

यानी कि कहते हैं ना, घोषित किया जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको हमारी ओर से ढेरों बधाइयां। और सभी श्रोता निराश ना हो, क्योंकि एक दिन सबका आता है, तो आपका भी आएगा। बस करना क्या है, आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है और सुनते रहना है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आप ही का कार्यक्रम, एक ही कलाकार। तो अभी आपने सुना 1988 में आई फिल्म अभी आपने सुना फिल्म जो गाना था चांद सिफारिश, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना। और हम आज जो कलाकार लेकर आए हैं वो तो आपको पता चल ही चुका है और आपने बता दिया है, लेकिन हम फिर बता देते हैं, हमने नहीं बताया, आमिर खान साहब। जी हाँ, आज के कलाकार हैं आमिर खान, जिनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। इनका जन्म 14 मार्च 1965 में बॉम्बे में फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जनित हुसैन के घर हुआ था। और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं और इतने गुरमीत जी ने हमें मैसेज किया है शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल साउथ एक्सटेंशन, गुरमीत जी ने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से हमें प्यार भेजते रहिए, मैसेज करते रहिए। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें मैसेज किया है राजकुमार जी ने, फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी ने किया है, ऐसे पुरुषोत्तम झा जी ने किया है, फारूक अली खान जी ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हम बात कर रही हैं आमिर खान साहब की। तो अभी आपने सुना 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक का रोमांटिक सॉन्ग जिसने आमिर खान को रातों रात स्टार बना दिया। इनके निजी जीवन और शुरुआती करियर की अगर हम बात करें तो इनका ताल्लुक फिल्मी पृष्ठभूमि से ही रहा। इनके पिता एक फिल्म निर्माता और इनके चाचा नासिर हुसैन साहब भी एक जाने माने निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने अपने चाचा की फिल्म यादों की बारात में एक बाल कलाकार के रूप में पहली बार पर्दे पर कदम रखा था। और जहां तक इनके निजी जीवन की बात की जाए तो इनकी पहली शादी रीना दत्ता से, जिनसे दो बच्चे हैं, और बाद में एक फिल्म निर्माता किरण राव से हुई जिनसे एक बेटा है। एक रोचक बात बताएं तो ये है कि ये एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। इसके अलावा इन्हें रूबिक्स क्यूब सुलझाने में भी महारत हासिल है। तो सुनते हैं इनसे ही जुड़ा एक और प्यारा सा नगमा।

लाखों माँ, बहुत सारे मैसेजेस हमें आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है हमें ये प्रोग्राम, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिएगा, प्रोग्राम कैसा लग रहा है और कैसा आप चाहते हैं वो भी हम आपका इसमें शामिल करेंगे। और अगर मैं किसी का नाम शामिल ना कर पाऊं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, अगली बार जरूर लेंगे। पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया और गगनदीप आरजू और गुड्डू ने मैसेज किया है। ऐसे आर कुमार जी ने, वर्डिंग पंजाब से मिंटू थॉमस और पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी ने, एक ही कलाकार के कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेजेस हमें आए हैं, पंजाब से गाँव नथाना, और हरिजिंदर छिद्दा, जसविंदर जस्सी और सीता गीता। इसी तरीके से बहुत सारे पुरुषोत्तम झा जी ने मैसेज किया है, सोमदत्त जी ने, जिला पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमुत कौर, और तुलसी मस्किन जी ने कहा है कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है उनको हमारा। चंडीगढ़ से बहुत सारे मैसेज आए हैं, शादरा से, दिल्ली से, बिहारी कॉलोनी से, तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता, केशोर सिरिधान खुराना और रणवीर कपूर, ये सभी जो भी हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम बता दें कि हम जब बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें बता दें कि फिल्म है हमारा, जो ये सफर है फिल्मी सफर, एक ही कलाकार, मैं हूं रना तवर, और आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं जाने माने सुपरहिट सिनेमा जगत के परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब। दोस्तों, इन्हें परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है। वो चाहते थे कि वो चाहे वो एक कलाकार के रूप में काम करें या एक निर्देशक के रूप में काम करें, लेकिन उनकी पूरी मेहनत उसमें, वो पूरा जान डाल देते थे, हर किरदार में अपनी जान डाल देते थे। और चाहे वो कोई भी फिल्म हो, उनकी किसी भी फिल्म को ले लें, दिल फिल्म हो, सीक्रेट सुपरस्टार हो, या फिर लगान हो, और अंदाज अपना अपना हो, कॉमिक की बात की जाए तो एक अलग ही अंदाज उनका होता था, देशभक्ति की बात करें रंग दे बसंती और मेरा मन, जो मन फिल्म का गाना है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। तो सुनते हैं ये वाला नगमा।

जी हाँ, मेरा मन भी आप सभी को बहुत चाह रहा है क्योंकि आप हमें मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 2001 आमिर खान के करियर का बेहद महत्वपूर्ण साल रहा है, फिल्म लगान हो दिल चाहता है, आमिर खान की 2007 में और तारे जमीन हो निर्देशन किया था, बड़े और बच्चों की जो सीखने की समस्या है उन्होंने इस बड़े संवेदनशील इस मुद्दे को समाज के सामने उजागर किया। 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स ने भारतीय सिनेमा में पूरी हलचल मचा दी। इस फिल्म का संदेश काबिल बनो काबिल, जो ये कामयाबी खुद ब खुद पीछे भागेगी का ये डायलॉग था, बहुत ही फेमस था। इस फिल्म के बाद जो अपनी जिंदगी करियर को लेकर कंफ्यूजन जो रहती है और जो युवा बहुत कंफ्यूज रहते थे वो उससे बाहर आए, और जो माता पिता बच्चों को अपनी उम्मीदों को आप बोझ और सपनों का टोकरा उन पर डाल देते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद समझ गए होंगे कि कामयाबी ऐसे नहीं आती, लादी नहीं जाती, नंबरों से कुछ वैल्यू नहीं होती, असली जो कामयाबी होती है उनके रुचि से, उनके जुड़े काम से होती है ना दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना कि हमें अपनी चीज़ें बच्चों पर नहीं लादनी, बच्चे जो करना चाहते हैं वो हवा में उड़ते रहें और अपनी कामयाबी सिर्फ अपने स्किल्स के माध्यम से करें तो बहुत बेहद होगा, अच्छा होगा।

उदयपान भान पाल जी ने हमें मैसेज किया है, जय भीम दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश। और उसी तरीके से तुलसी मस्कीन जी ने मैसेज किया है, और उदयपान हमारे अनिल मोहन जी ने मैसेज किया है, और बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। संदीप मक्कर जी ने हमें मैसेज किया, इंदिरा भान सिंह जी ने, अनुभव ऋषभ राम सरोवर नारायण प्रसाद दिनेश कालिंद्री और मोहम्मद सईद अब्बासी जी ने हमें मैसेज किया है। इसी तरीके संदीप मक्कर जी ने किया है, पीएस नावस्कर की जी ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और निर्मला विशाल सोपान नारायण इंगले और पीएस नुहाकर, इन सभी ने हमें मैसेज किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फागुराम यादव जी ने हमें मैसेज किया है, ज्योति ओजस्वी जी ने मैसेज किया है, थैंक यू।

तो अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो दोस्तों सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्तों। अगला कार्यक्रम आपका मैटिनी मेलोडी जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारी दोस्त हैं जो इसे प्रस्तुत कर रही हैं, करेंगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो प्यार बना के रखती हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी जिंदगी में हार ना माने और एक अच्छा सभ्य नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने, और किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, और किसी का बुरा ना करें तो ये भी आपकी खुद की मदद है। और सड़क पर वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबकी सुरक्षा है। और सभ्य और एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा ऐसा एक नेक काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके चेहरे पर दे और आपके दिल को दे सुकून। तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। तो आवाज तो सुननी बनती है, फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ, नए यादगार के साथ, और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जिसका नाम अगर मैं लेना भूल गई हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। इस कार्यक्रम से रहना तब को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। तो अब यानी कि समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय होने चला है हमारा अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है मैटिनी मेलोडी।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। जी हां, आज हम आपको लेके चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जिसे भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन इरा। ये वो वक्त था जब गीत केवल फिल्मों का हिस्सा नहीं होते थे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते थे। 1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सबसे श्रमबद्ध और दौर माना जाता था। उस समय गीतकारों की कलम से कविता थी, कविता निकलती थी, संगीतकारों की धुनों में आत्मा थी और गायकों की आवाज में ऐसा जादू था कि गीत सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। और वही गीत चुनकर आज मैं लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको वो गीत जरूर पसंद आए होंगे। आप भी मेरे साथ इस सफर में हम सफर बन सकते हैं, और उस दौर का आपका जो भी फेवरेट गीत रहा हो वो आप मुझे संदेश के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल आपके लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में चुनकर लाई हूं ये गीत। फिल्म है सूरज।

1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सबसे खूबसूरत दौर। ये वो दौर था जब शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी और हसरत जयपुरी जैसे गीतकार शब्दों का जादू बिखेर रहे थे। वहीं नौशाद, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन और ओपी नैयर जैसे संगीतकार सुरों की दुनिया को नई ऊंचाइयां दे रहे थे। और जब इन धुनों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले और मन्ना डे जैसी आवाजें मिलती थी तो गीत अमर हो जाते थे। चलिए सुनते हैं आशा जी की आवाज में फिल्म वक्त से ये खूबसूरत सा गीत।

और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो लता दी और रफ़ी साहब की आवाज़ में है, मुकेश जी की भी आवाज़ आपको नज़र आएगी। फिल्म है श्री 420। राज कपूर की ये खूबसूरत सी फिल्म भारतीय आत्मविश्वास

1956 में एक फिल्म आई थी चोरी चोरी, आपने जरूर इस फिल्म को देखा होगा। ये फिल्म जिसकी खासियत थी बारिश बारिश, रोमांस और मधुर संगीत, एक ऐसा संगम जो बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। और आज भी ये गीत अपनी रोमांटिक गीतों की सूची में सबसे ऊपर गिनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक मधुर गीत लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप दोपहर 3:30 तक, यानी कि आधे घंटे तक आप आनंद ले सकते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का, हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के मधुर सदाबहार और लोकप्रिय गीतों का ये विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आप सुनाएंगे पुराने दौर के यादगार नगमे, दिल को छू लेने वाले मधुर गीत, संगीत के सुनहरे सफर का आनंद, सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ, इस ही प्रोग्राम में। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस नए प्रोग्राम को भी वही प्यार दे रहे हैं जो आप दूसरे प्रोग्राम्स को देते हैं। अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो 1960 की एक खूब

मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलड़कर, रतनमाला ओम प्रकाश जी हमारे साथ, ओम कुमार जी हमारे साथ हैं और पुरुषोत्तम झा जी प्रोग्राम सुन रहे हैं बुराड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगला जो संदेश है हमारे पास है ग्राम राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश, दिव्यांश और पूरे परिवार जुड़ा हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़

कर से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल जी हैं और लिख रहे हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये नया कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और अगला जो संदेश है हमारे पास वो वीरन गांव गुजरात से अजीत कुमार भापसर और प्रमिला भापसर जी का है। लिख रहे हैं कि 1950 से 1960 के दशक का गीत फिल्म CID से रफ़ी और शमशाद आसफ भोसले की आवाज़ का ये गीत सुनना चाह रहे थे। कोशिश करेंगे कि किसी और दिन इस प्रोग्राम में आपकी पसंद हम ज़रूर पूरी करें। ऊपर कोच मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगत परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन, अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत और संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। इस नए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि सुर बदल सकते हैं, दौर बदल सकते हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाले गीत कभी पुराने नहीं होते। यही कारण है कि हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग यानी कि गोल्डन ईरा आज

0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में तय पाया। इसके तहत ग्राम पंचायतों की क्यादत में एक कम्युनिटी पर मबनी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इसका मकसद हर देही घराने को मुनासिब मकदार में और मुकर्ररा मेयार के मुताबिक पीने का पानी बाकायदगी से फराहम करना है। इस मौके पर सी आर पाटिल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में जल जीवन मिशन देही इलाकों में पीने के पानी के शोबे में बड़ी तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 में पानी की मुसलसल फराहमी, नल कनेक्शन की फ़ालियत, पानी के मेयार और आबी ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम हर घर निरंतर नल से जल के विज़न को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। इससे विकसित भारत 2047 के हदफ के मुताबिक तवील मुद्दती आबी तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग मिलेगा। देही रोजगार, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और देहात की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए मरकजी हुकूमत यकुम जुलाई 2026 से एक बड़े मालियाती और पॉलिसी पैकेज पर अमल दरामद करने वाली है। विकसित भारत जी रामजी के नफाज के सिलसिले में रियासती वज़राए देही तरक्की के इजलास से खिताब करते हुए ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये सिर्फ एक स्कीम की मुंतकली नहीं बल्कि करोड़ों मजदूरों के रोजगार और जिंदगी से जुड़ा मामला है। उन्होंने ये वाजे किया कि मुंतकली के दौरान एक भी मजदूर बेरोजगार नहीं रहना चाहिए और न ही उजरत की अदायगी या कानूनी हुकूक में किसी किस्म की रुकावट आनी चाहिए। मरकजी वजीर ने बताया कि मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के लिए 95,692 करोड़ रुपए की उबूरी रकम जारी की गई है। इस तरह मजमूई मालियाती फराहमी 1.25 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने कहा कि ये फंड मुल्क की तकरीबन 2,80,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा और नए फ्रेमवर्क के तहत ग्राम पंचायतें देही तरक्की के अगले मरहले की क्यादत करेंगी। मंसूबों का इंतखाब ग्राम सभाओं और पंचायतों की सिफारिशात की बुनियाद पर होगा ताकि रोजगार की फराहमी और देही असासों की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और साइंस और टेक्नोलॉजी व अर्जियाती उलूम के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुश्तरका तौर पर लखनऊ में नए इलाकाई मौसमियाती मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के मौसमियाती बुनियादी ढांचे में बेमिसाल तौसी हुई है, जिसके नतीजे में ज़्यादा दुरुस्त, मकाम से मखसूस और असरात पर मबनी मौसमियाती खिदमात फराहम करना मुमकिन हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 में मुल्क में सिर्फ 17 डोपलर वेदर रडार थे, जबकि अब उनकी तादाद बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के तहत मजीद 50 रडार नस्ब किए जाएंगे, जिसके बाद अगले 2 बरसों में मुल्क में तकरीबन 100 डोपलर वेदर रडार मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती पेशगोई के निज़ाम में नुमायाँ बेहतरी आई है और अब शहरियों को मुख्तसर मुद्दत और मकामी सतह की ज़्यादा दुरुस्त पेशगोइयाँ दस्तयाब हैं, जिससे बेहतर मंसूबा बंदी और आफात से निमटने में मदद मिल रही है।
1: सफ़र मंजिलों का सामिन, अभी आप इस मौजू के तहत मुल्क की तरक्याती सरगर्मियों का अहवाल सुन रहे थे। पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इरफान। सामिन, शुक्रगुजारी एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद दिल की गहराइयों से उभरता है। उसको हम महज एक जज्बाती रद्द अमल नहीं कह सकते, बल्कि हम शुक्र और नाशुक्री में से किसी एक को चुन लेते हैं। जब हम किसी तोहफे या नेमत को हासिल करते हैं और उसको कदर की निगाह से देखते हैं, तो दिल खुद ब खुद शुक्रगुजारी के लिए झुक जाता है। यही खूबी हर इंसान के अंदर मौजूद नेकी की ताईद करती है। कहा जाता है कि शुक्रगुजारी तमाम खूबियों की माँ है। ये एक ऐसी खूबी है जो दूसरी अच्छाइयों को जन्म देती है। समय आइए सुनते हैं प्रोग्राम हर्फ ताबिंदा। मौजू है जिंदगी का मकसद।
2: जिंदा तो सभी होते हैं, मगर जिंदगी गुजारने का सलीका बहुत कम लोगों का आता है। जिंदगी क्या है अगर महज यही सोचा जाए تو خود

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

印度特里广播电台，印度特里广播电台，听众朋友们，请收听西郭马尔·夏马弹琴的三段。

인도델리 광보 电台 听众 朋友们, 现在我们播送 수미트라 고하 창의 인도 古典音乐, 请收听.

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

0: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी
1: और मैं हूं अनुगुप्ता। और आज हम लेकर आए हैं बड़ी सारी रोमांचक खबरें खेल की दुनिया से।
0: तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को दी है करारी मात, और साथ ही बांग्लादेश और नीदरलैंड के गेम के बीच में भी हम करेंगे बात और करेंगे पूर्वावलोकन न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका के होने वाले मैच के बारे में।
1: साथ ही सबके दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, सभी मैचेस की जो हो चुके हैं और कुछ रिव्यूज उन मैचेस के जो होने वाले हैं।
0: बात करेंगे हॉकी की, FIH प्रो लीग इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बारे में भी जानकारी आपको सुनने के मिलेगी मेंस और वुमेन्स दोनों ही खेमे में से।
1: और एक धमाकेदार खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्चरी के मैदान से, लेकिन वो खबर आप सुनेंगे प्रोग्राम में बाद में।
0: इंडियन एथलेटिक्स स्क्वाड का भी घोषणा हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए।
1: मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि स्क्वैश, जो इस बार पहली बार ओलंपिक में इस खेल को स्थान दिया गया है, उसके भी स्क्वाड की, भारतीय स्क्वाड की घोषणा की जा चुकी है। तो आइए सुनते हैं फीफा की खबर।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और 14-15 जून को खेले गए चार मुकाबलों में फैंस को मिला रोमांच, उलटफेर और गोलों की बारिश। आइए बारी बारी नजर डालते हैं इन सभी मुकाबलों पर। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी बनाम क्यूराकाओ की। ग्रुप ई के इस मुकाबले में ह्यूस्टन स्टेडियम में 14 जून को जर्मनी और क्यूराकाओ का सामना हुआ। ये मैच क्यूराकाओ के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि ये उनका वर्ल्ड कप में पहला ही मुकाबला था और क्यूराकाओ दुनिया का सबसे छोटा देश है जो कभी वर्ल्ड कप में पहुंचा है। शुरुआत में मामला बराबरी का दिखा। फेलिक्स नमेचा ने सिर्फ छठे मिनट में जर्मनी के लिए गोल किया, लेकिन क्यूराकाओ के लिवानो कोमेंसिया ने तुरंत बराबरी कर ली और ये क्यूराकाओ का वर्ल्ड कप इतिहास का पहला गोल बन गया। ये उनके लगभग 185,000 की आबादी वाले देश के लिए बहुत बड़ा पल था, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। निको शाल्टर बेक के हेडर और काई हावर्ट्स की पेनल्टी से हाफ टाइम तक जर्मनी ने बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में जमाल मुसियाला ने तुरंत गोल दागा, फिर नथानियल ब्राउन ने 68वें मिनट में स्कोर को 5-1 कर दिया और डेनिस उंडाव ने

0: 78वें मिनट में छठा गोल किया। आखिर में हॉवर्ड्स ने 88वें मिनट में अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 7-1 तक पहुंचा दिया। इस मैच में एक और दिलचस्प बात रही कोचों की उम्र का अंतर। क्यूराकाओ के 78 वर्षीय कोच डिक एडवोकाट वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे उम्रदराज कोच बन गए, जबकि उनके सामने जर्मनी के 38 वर्षीय जूलियन नागल्समन इस टूर्नामेंट के सबसे युवा कोच हैं। यानी कोचिंग में सबसे बड़ा उम्र का गैप इस मैच में देखने को मिला, जो लगभग 40 वर्ष का है। फाइनल स्कोर रहा जर्मनी 7-1 और काई हॉवर्ट्स इस मैच के स्टार खिलाड़ी रहे।
1: आइए चलते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ, जो था जापान बनाम नेदरलैंड्स। ग्रुप एफ का ये मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला गया और ये दोनों टीमों के लिए ओपनिंग गेम था। पहला हाफ बिल्कुल गोल रहित रहा, लेकिन दूसरा हाफ देखने लायक था। नीदरलैंड्स के विर्गिल वॉन डाइक ने हेडर से टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन सिर्फ 7 मिनट बाद जापान के कीटो नाकामुरा ने बराबरी कर ली, जब उनका शॉट जॉन पॉल वॉन हैके के पैर से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया। फिर लगा नीदरलैंड्स मैच जीत लेगा, जब क्रिसेनिया समरविले ने बेहतरीन गोल करते हुए नेदरलैंड्स को फिर आगे कर दिया। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। दाइची कामादा ने 88वें मिनट में एक कॉर्नर के बाद डिफ्लेक्शन से गोल करते हुए मैच को 2-2 से बराबर कर दिया और ये वर्ल्ड कप इतिहास में जापान का सबसे लेट गोल था। आंकड़ों के लिहाज से भी ये मैच ऐतिहासिक रहा। यह पहली बार था जब नेदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप मैच में 2 बार बढ़त ली लेकिन जीत नहीं सके। दूसरी तरफ जापान सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वे 2 बार पीछे रहे लेकिन हार से बच गए। इससे पहले 2018 में सेनेगल के खिलाफ हुआ था। नतीजा रहा नेदरलैंड्स 2-2, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला।
0: और अब बात करते हैं तीसरे मुकाबले के, आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेला गया ये ग्रुप ई का मुकाबला बेहद कांटे का रहा। पहला हाफ गोल रहित रहा, लेकिन इक्वाडोर ने बेहतर मौके बनाए। जॉन येबोआ और एलन मिंडा दोनों के शॉट क्रॉसबार से टकराए। दूसरे हाफ में भी एनर वेलेंसिया का शॉट भी गोल पोस्ट से जा लगा। यानी इक्वाडोर के लिए ये मैच वुडवर्क से भरा रहा, लेकिन फुटबॉल में किस्मत का खेल भी होता है। 90वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए अमाद डियोल ने बिल्ड फ्रीड सिंगो के पास शानदार फिनिश करते हुए आइवरी कोस्ट को जीत दिला दी। इस गोल ने इक्वाडोर के 19 मैचों के अपराजित सिलसिले को खत्म कर दिया। साथ ही आइवरी कोस्ट की 12 साल में पहली वर्ल्ड कप जीत बनी। फाइनल स्कोर रहा आइवरी कोस्ट 1-0।
1: रोमांचक मैचों की लड़ी में आइए चलते हैं चौथे मुकाबले की तरफ, जो था स्वीडन बनाम ट्यूनिशिया का। ग्रुप एफ का ये दूसरा मुकाबला मॉन्टेरी स्टेडियम में खेला गया और यहाँ स्वीडन ने धमाकेदार वापसी की। यासीन अयारी, जो ट्यूनिशिया मूल के खिलाड़ी हैं, ने 7वें मिनट में दूर से शानदार शॉट लगाकर स्वीडन को बढ़त दिला दी। इसके बाद ओमर रेकिक ने ट्यूनिशिया के लिए 43वें मिनट में गोल करके बराबरी की कोशिश की, लेकिन स्वीडन ने हाफ टाइम के बाद मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर इसाक ने 30वें मिनट, विक्टर ग्योकेरेस ने 59वें मिनट में गोल किए और फिर आया वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। मैटियास स्वानबर्ग मैदान में उतरने के सिर्फ 18 सेकंड बाद ही गोल कर बैठे। ये वर्ल्ड कप इतिहास में किसी सब्स्टिट्यूट का सबसे तेज गोल बना। आखिर में यासीन अयारी ने 96 मिनट में दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 5-1 कर दिया। इस जीत के साथ स्वीडन ने 1938 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में 5 गोल दागे और ग्रुप एफ में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तो श्रोताओं, ये रहे 4 मुकाबलों के नतीजे। जर्मनी की दबदबे वाली 7-1 की जीत, जापान नेदरलैंड्स का रोमांचक 2-2 का ड्रॉ, आइवरी कोस्ट की लास्ट मिनट 1-0 की जीत और स्वीडन के धमाकेदार 5-1 की जीत। ग्रुप ई और ग्रुप एफ दोनों में मुकाबले अब बेहद दिलचस्प हो गए हैं।
0: तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज खेले जाने वाले 4 बड़े मुकाबलों की ओर। डालते हैं नजर इन सभी मैचों के प्रीव्यू पर। सबसे पहला मुकाबला होने वाला है बेल्जियम बनाम मिस्र का। ग्रुप जी का ये मुकाबला सिएटल के लुमेन फील्ड में खेला जाएगा। ये दोनों टीमों के लिए ओपनिंग गेम है और दोनों ही अपने वर्ल्ड कप कर्स तोड़ने की कोशिश में है। बेल्जियम वर्ल्ड कप में 15वीं बार हिस्सा ले रहा है और कोई भी यूरोपीय टीम इतनी बार खेलकर भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। दूसरी तरफ है इजिप्ट की टीम, पिछले 7 मैचों में 1 भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। रूडी गार्सिया की कोचिंग में बेल्जियम बीते 13 मैचों से अपराजित है और हाल ही में ट्यूनिशिया को 5-0 से हराया।

0: मिस्र की तरफ से कैप्टन मोहम्मद सलाह पर सबकी निगाह होंगी। सलाह अपने देश के सबसे बड़े गोल्डन रिकॉर्ड से सिर्फ 2 गोल दूर है, जो फिलहाल उनके ही हेड कोच के नाम है। तो ये मैच सलाह के लिए इतिहास रचने का मौका भी हो सकता है। और बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट का ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा।
1: आइए आपको लेकर चलते हैं ग्रुप एच के दूसरे मुकाबले की तरफ, जो कि खेला जाएगा सऊदी अरब बनाम उरुग्वे के बीच। ग्रुप एच का ये मुकाबला मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में उरुग्वे को साफ तौर पर फेवरेट माना जा रहा है। उरुग्वे की टीम मार्सेलो बियेल्सा की कोचिंग में खेल रही है, जिन्होंने टीम को एक हाई टेम्पो और अनुशासित खेल वाली टीम बना दिया है। फेडरिको वाल्वर्डे, मैनुएल उगार्ते और डार्विन नूनेस जैसे स्टार खिलाड़ी इस टीम की ताकत है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की टीम के लिए हालात आसान नहीं है। अप्रैल 2026 में हर्वे रेनार्ड की जगह जॉर्जियोस डेनिस को कोच बनाया गया और टीम पिछले 5 मैचों में 4 बार हार चुकी है। हालांकि सलीम अल दौसरी टीम के कैप्टन और सबसे खतरनाक अटैकिंग खिलाड़ी हैं और किसी भी पल कुछ खास कर सकते हैं। इतिहास की बात करें तो 2018 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें भिड़ी थी, जिसमें लुइस सुआरेस के गोल की मदद से उरुग्वे ने 1-0 से जीत हासिल की थी। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 3:30 बजे खेला जाएगा।
0: और चलिए अब नजर डालते हैं कल सुबह 6:30 बजे भारतीय टाइम अनुसार खेले जाने वाले मुकाबले की, जो होगा इनाम बनाम न्यूजीलैंड। ये मुकाबला भी ग्रुप एच का हिस्सा है। दोनों ही टीमें अपने अपने महाद्वीप की क्वालिफायर के जरिए यहां पहुंची हैं और दोनों के लिए ये मैच ग्रुप की शुरुआत के लिए बेहद अहम है। ये मुकाबला उरुग्वे सऊदी अरब के मैच के साथ ही ग्रुप एच की तस्वीर भी साफ करने में मदद करेगा।
1: चौथे मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्पेन बनाम केप वर्डे के बीच होगा, जो कि रात 9:30 बजे खेला जाएगा। ये मुकाबला भी आज के शेड्यूल का हिस्सा है, जहां स्पेन एक मजबूत फेवरेट के तौर पर उतरेगा। केप वर्डे के लिए मुकाबला अपने देश के लिए वर्ल्ड कप में कुछ खास करने का मौका होगा, जो खुद एक छोटे से अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र से वर्ल्ड कप तक पहुंचा एक बड़ा अचीवमेंट मानता है।
0: तो श्रोताओं, आज का दिन फुटबॉल फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। बेल्जियम मिस्र का कांटे का मुकाबला, उरुग्वे का सऊदी अरब के खिलाफ फेवरेट के तौर पर उतरना और ईरान न्यूजीलैंड और स्पेन केप वर्डे जैसे मुकाबले, कुल मिलाकर आज का दिन रोमांच से भरा रहने वाला है।

0: तो जी हाँ श्रोताओं, आपने सुना फीफा के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। आइए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का चल रहा है, वहां से भी एक धमाकेदार खबर आ रही है। उसी खबर पर बात करेंगी विजेता। आइए सुनते हैं विजेता की रिपोर्ट।
1: आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है इंग्लैंड के बर्मिंगम में, और पहले ही दिन फैंस को मिले दो धमाकेदार मुकाबले। आइए डालते हैं एक नजर इन दोनों मैचों पर। सबसे पहले उस मैच की बात करते हैं जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, भारत बनाम पाकिस्तान। एडबेस्टन के मैदान पर भरे हुए स्टेडियम के सामने रिकॉर्ड दर्शकों की मौजूदगी में भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने स्मृति मंधाना की 68 रनों की पारी, हरमनप्रीत कौर के 36 और ऋचा घोष के 34 रनों की मदद से 6 विकेट पर 170 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। मंधाना ने पारी को 18 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद संभाला और टीम को इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम पूरी तरह बिखर गई। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 5 विकेट सिर्फ 10 रन देकर लिए और आखिरी 3 विकेट सिर्फ 5 गेंदों में चटका दिए। मुनीबा अली ने 41 रन बनाकर थोड़ी कोशिश की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 106 रन पर ऑल आउट हो गई, यानी भारत को मिली 64 रनों की शानदार जीत। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अपनी इस शानदार जीत पर क्या कहती हैं दीप्ति शर्मा, आइए सुनते हैं।
2: अपने प्लान्स को बहुत सिंपल रखा, सेल्फ बिलीफ था कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आई हैव टू स्टेप अप, और जैसे विकेट स्लाइटली टर्निंग था तो अपने अच्छे बॉल्स और अपने अच्छे लेंथ पे हिट कर रही थी, जो अच्छे एरियाज हैं उसी पे बैक टू बैक में बॉल डालती रहूं, और पिच पे स्पीड बहुत ज्यादा क्रूशियल था तो हर एक ओवर में वेरी कर रही थी, तो उस चीज ने मुझे हेल्प किया।
1: साथ ही वो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर भी बन गई। इस जीत के साथ भारत ग्रुप एक में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Sifuri. Hini ida kiswahilia kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema
1: kwa ek sandesh dena chahenge jo is samay aapko hamare karyakram ke madhyam se sun pa rahe hain.
2: मैं ये सबसे प्रार्थना करूंगा कि योग का समय जो है वो प्रातःकाल रखें, वो ब्रह्म मुहूर्त में रखें, और अगर किसी कारण से, क्योंकि बहुत श्रोता हमारे मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं, तो अगर उस समय संभव नहीं है तो शाम का समय चयन किया जा सकता है. लेकिन एकमात्र मेरी ये प्रार्थना है कि अगर हम सुबह इसका अभ्यास करेंगे तो उस समय हमारी ऑक्सीजन की प्रतिमात्रा अन्य गैसों के मुकाबले अधिक रहती है, और वो समय भी रहता है योग का जब हमारा मन ईश्वर की ओर अग्रसित होता है.
1: डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे बुजुर्गों के लिए योग के महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों और हेल्दी एजिंग के मंत्र को समझाया. मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो श्रोता हैं आज के इस हमारे कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा जरूर बनाएंगे. स्टूडियो में आने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार.
3: तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित योग अभ्यास और सावधानियां. अरुण कुमार योग शिक्षक सहारनपुर से बातचीत कर रहे थे तुषार पराशर. तो शीतल बहन, योग बहुत जरूरी है हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्योंकि इससे शारीरिक संतुलन, जोड़ों के लचीलेपन और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभदायक है.
4: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि योग हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने पैरों पर ज्यादा समय तक खड़े रहें, किसी पर आश्रित ना हो और आत्मनिर्भर रहें, उनके हाथ पर इस कदर काम कर सके कि उनकी दिन की जरूरतों की चीजें हैं, खाना लेना, पानी पीना, और कई बार आपको जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना है या शौचालय जाना है, वो चीज़ें खुद कर पाएं. क्योंकि क्या होता है, कई बार बुजुर्ग क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, नहीं ध्यान देते अपना, या घर वाले ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कहते हैं ना बुजुर्ग खाट पकड़ लिए, ऐसे समय में तो उनकी बहुत सारी चीज़ें वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं. इसके साथ ही साथ श्रोताओं, आज हमारा विश्व, हमारा देश विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहा है. इस दिवस का उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना. क्योंकि श्रोताओं, बुजुर्ग क्या होते हैं, हमारे लिए अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के भंडार होते हैं. उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समाज के निर्माण में लगाया है. लेकिन बदलती जो जीवन शैली है, आजकल हम क्या देख रहे हैं, लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते क्योंकि वो तनाव में इतना रहते हैं, चाहे वो उनके काम का तनाव हो, आय का, मतलब घर में आय से संबंधित कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो वो गुस्सा क्या होता है, अपने बुजुर्गों पे निकल जाता है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. और ये किस प्रकार से हम करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, चाहे उनको शारीरिक हिंसा हो रही है, चोट पहुंचा रहे हैं या उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से बचना है. और आर्थिक शोषण, जैसे उनकी संपत्ति या धन का अनुचित उपयोग नहीं करना है. क्योंकि क्या करते हैं, बुजुर्ग अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी आप उनकी जो बेचारों की जमा पूंजी होती है वो अपने बच्चों के लिए एकत्रित करते हैं कि उनके भविष्य में काम आएगी, और अगर उनका दुर्व्यवहार होता है तो उनको वो चीज़ बुरी लगती है. तो इन चीज़ों से बचना है, हमें उनको सम्मान करना है. भले आपको लगता है कि उनकी बातें आपके काम की नहीं है, तो उनको अच्छे से सुन लें, भले सोच विचार करके उनको बात में समझाएं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये काम ऐसा कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, हम अपने बुजुर्गों के साथ जो होने वाला जो दुर्व्यवहार है, जो हम जाने अनजाने में भी कर देते हैं, वो भी ना कर पाएं.
3: बिल्कुल शीतल बहन, और ये आजकल अक्सर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरेशन गैप कहते हैं ना
4: जी, बिल्कुल
3: उस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है. लेकिन वो सोचे कि कभी हम भी जो आज नौजवान है वो भी कभी बुजुर्ग होंगे, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें. तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई. तो अब तो थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना चाहिए, और हमें अपने किसान भाई बहनों को सुनवाते हैं सुरेश चंद्र गोला की आवाज में ये प्यारा सी रागनी.

0: तो श्रोता सुन रहे थे सुरेश चंद्र गोला की आवाज में, ये रागिनी यौवन में भरपूर।
1: और हम कई योजनाओं के बारे में बता चुके हैं, और उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत आम जनता को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 80% तक का कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं ये हैं कि दवाइयों की उपलब्धता बहुत आसानी से कई केंद्रों पर है और किफ़ायती है, और दवाइयों के अलावा किफ़ायती दामों पर ये जन औषधि केंद्रों में मिल रही हैं। व्यापक नेटवर्क भी है इसका, और इसके बहुत सारे योजना के उद्देश्य हैं। सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक दवाइयां उपलब्ध कराना है, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना, जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में
0: जी
1: ज़्यादा जागरूकता नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देना है, क्योंकि जो आजकल दवाएं बहुत महंगी हैं, वो यहाँ पे जन औषधि केंद्रों में बहुत ही सस्ती दामों पर और बहुत अच्छी क्वालिटी में सेम दवाइयाँ मिल जाती हैं।
0: जी बिल्कुल
1: और जन औषधि केंद्र कहाँ कहाँ है उसके बारे में, दवाएं दुकानें खोली गई हैं, जन औषधि केंद्र कहाँ है इसके बारे में आप आसानी से पता भी लगा सकते हैं। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाइयाँ बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध होती है। आपके केंद्र कहाँ कहाँ पे, आपके निकटतम केंद्रों के बारे में बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको। और यदि किसी को पता है नहीं है कि जेनरिक दवाएं क्या होती हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो दवाएं, जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं, उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता समान ही होती है, बट ये जो सस्ते मूल्यों पे मिल जाती हैं, इसको कहते हैं जेनरिक दवाइयां। जो इसके लाभ तो हमने आपको बता ही दिए, दवाइयां सामान्य बाजार मूल्य से 50% से 90% तक की सस्ती मिल जाती हैं यहाँ पे।
0: और श्रोताओं आपको ये भी जानना जरूरी है कि जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने के लिए आपको किसी भी विशेष कार्ड या सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई दुकानदार या कोई भी ऐसा इंसान आपको बोलता है कि आपके पास ये कार्ड होना चाहिए या कोई आपके पास ये सदस्यता होनी चाहिए, तभी आप ये दवाई ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर डॉक्टर का पर्चा है, किसी भी डॉक्टर का या किसी भी अस्पताल का आपके पास पर्चा है, उस पर दवाइयाँ लिखी हुई हैं, तो आप जन औषधि केंद्र जाकर वो दवाइयाँ आराम से सस्ती दरों पर ले सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा आपके पैसों का नुकसान ना हो और अच्छी क्वालिटी की अच्छी दवाइयां आप आराम से ले सकें।
1: बिल्कुल। और कुछ जैसे आजकल जो बीमारियां हैं, जैसे जो आजकल आम हो गई, जैसे मधुमेह हो गया, हृदय रोग है, संक्रमण है, एलर्जी हो जाती है, इस तरह की दवाइयां भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं कम कीमत पर।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट व्हिटसो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट व्हिटसो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। समय शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम। तो कुसुम बहन अपने श्रोताओं को बता दें कि जैसे कि कृषि से संबंधित कार्यक्रम है, हमारे किसान भाई बहन भी सुन रहे हैं, तो उनसे ही संबंधित एक बहुत जरूरी बात है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अत्याधुनिक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, उसका भूमि पूजन किया गया है हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उनके द्वारा किया गया है। आइए पहले इनको सुनते हैं फिर।
2: आज का दिन विदिशा के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भूमि पूजन किया है। यहाँ जो जमीन है 49 एकड़, इस पर प्रदर्शन के प्लाट लगेंगे। आधुनिक तरीके से खेती इसी सीजन में प्रारंभ करेंगे, खरीफ नहीं। हमका बिल्डिंग इल्डिंग बनती रहेगी, लेकिन जो काम बिना बिल्डिंग के हो सकता वो तो तत्काल करना है। और इसी खरीफ में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। मेरे किसान भाइयों, खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 2.5 एकड़ जमीन में भी अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग खेती ठीक से की जाए तो पूरे परिवार का ढंग से पेट पाला जा सकता है, आजीविका चलाई जा सकती है। और वो सारे सिस्टम का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। ये केवीके कई तरह के नवाचार करेगा। देश और दुनिया में जो जो चीजें हो रही है वो यहां करके आपको दिखाएगा, ताकि आप देखें और सीखें। ये अलग अलग तरह की वैज्ञानिक सलाह आपको देगा, कौन सी समस्या क्या करें उसका समाधान यहां से आपको मिलेगा। और किसान भाइयों, हमने मोबाइल पर भी ये सूचना देने की एक व्यवस्था की है। भारतीय अपना भारत विस्तार सिस्टम बनाया है कि मान लो सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ गई, इल्ली लग गई, कहां पूछें तो फोन करके आप पूछेंगे तो तत्काल फोन पर ही आपको सूचना मिलेगी कि अब फलानी दवाई डाल दीजिए या फलानी चीज कर लीजिए। यह आपको जो रिसर्च दिल्ली में होगी, आज हमसे 113 संस्थान आईसीआर के जुड़े हैं, कभी यही कार्यक्रम नहीं हो रहा, और 731 जगह से कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जुड़े हैं। जहां जहां नया नवाचार होगा, रिसर्च होगी, जो वैज्ञानिक शोध करेंगे उसकी तत्काल जानकारी किसानों को यहां से दी जाएगी, इस क्षेत्र के किसानों को। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, यहां एक एग्री क्लिनिक बनाया जाएगा, अस्पताल, जैसे आदमी का अस्पताल होता है ना, वैसे ही अब फसलों का अस्पताल यहां खोला जाएगा। इसमें आप अपनी फसल की बीमारी बताएंगे तो यहां से बताया जाएगा कि तत्काल ये उपाय कर लो, ताकि पौधा बचाया जा सके। एक बात और होगी, यहां पानी अब बहुत कम है और इस साल अलनीनो आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया के मौसम विज्ञानी ये बता रहे हैं कि कई हिस्सों में पानी कम गिरेगा। अब कम पानी में अच्छी फसल कैसे करें, ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। और इसलिए यहां कम पानी में तो जो नई नई पद्धतियां हैं कम पानी की, बाकी वो भी आपको बताई जाएगी। और आजकल एआई का काफी शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों से पता लगा के कि क्या परिस्थिति बनेगी, उस हिसाब से सलाह देने का काम भी यहां पे किया जाएगा। एक हमने किसान सारथी एग्रीस्टैक और भारत विस्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। एक नंबर जरा सब नोट कर ले, मैं नोट करा रहा हूं, 1551-155-261, ये नंबर है भारत विस्तार। जब आप इस पर फोन लगाएंगे तो उधर से भारती बोलेगी और पूछेगी कि आपकी समस्या क्या है, तो ये डिजिटल समाधान आप फोन पर पूछेंगे और आपको मिल जाए, इसकी कोशिश यहां पे होगी। यहां सभी किसानों को जिले के

0: कृषि सेवाओं, योजनाओं और सलाह का लाभ यहां से मिलेगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब हम यहां ये भी करेंगे कि जो आपकी जरूरत है उस पर रिसर्च हो। मेरे किसान भाइयों, विशेषकर नौजवान किसान भाइयों से मैं कह रहा हूं, यहां खेती करना सिखाया जाएगा, कौशल विकास, यहां कई तरह के इनोवेशन होंगे और इसमें जो कच्चा माल है तो उसमें दूसरी चीज कैसे बनाए, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, इसका काम भी यहां शुरू किया जाएगा। यहां कोई नौजवान अगर स्टार्टअप चालू करना चाहेगा, कोई नया काम खेती का, तो उसको भी मदद दी जाएगी और उद्यमता को बढ़ावा देने का काम होगा। यहां एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, कई तरह की नई नई मशीनें आ रही हैं। अब किसान खरीद तो नहीं सकता, छोटा किसान हर मशीन कैसे खरीदे, और इसलिए यहां मशीन बैंक बनाएंगे। अब रेजर लेबरल की बात आ रही है, जरूरत पड़ेगी किसान करवाएंगे, ऐसा किराया इतना जो किसान सहन कर सके उतना देंगे और अपना काम हो जाएगा। खरीदने की जरूरत नहीं है, काम पड़े तो ले जाओ और जिसका जो नॉमिनल चार्ज है जो जरूरी है वो दे जाओ। और सबसे बड़ी बात है बीज, उत्पादन के लिए अच्छे बीज भी चाहिए, अच्छा खाद भी और पेस्टिसाइड भी चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, अब अच्छा बीज यहीं तैयार करवाया जाएगा ताकि भटकना ना पड़े। और उसके साथ साथ हम अभियान चलाएंगे कि किसान अच्छा बीज लगाएं, और बीज के साथ साथ भैया ये पेस्टिसाइड की बात अभी आपको बताई, और मेरी बहनों, नकली खाद, बीज और पाउडर पेस्टिसाइड बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पहचानने के लिए अभी आपको बताया गया है, पक्का बिल लो और QR कोड का उपयोग करो तो आपको पाउडर खराब नहीं मिलेगा, उसकी पहचान की भी यहां व्यवस्था की जाएगी कि कैसे पहचाने। तो अलग अलग तरह की गतिविधियां करनी पड़ेगी, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी मॉडल यहां बनाया जाएगा। एक हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ खेत में कैसे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, उसका मॉडल भी हम यहां बनाएंगे ताकि किसान देखे और सीखे। ये कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए वरदान बनेगा, और जल्दी सीहोर में भी कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, रायसेन बाले को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये केंद्र विदिशा जिले के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में खोला जा रहा है, स्थापित किया गया, और इसकी जो खास विशेषता है वो ये है कि ये फसलों का अस्पताल होगा। इस केंद्र में एक विशेष एग्री क्लिनिक बनाया जाएगा जहां किसान अपनी फसलों या मिट्टी से नमूने लेकर वैज्ञानिकों से सटीक इसका इलाज करा पाएंगे और कोई सलाह होने चाहिए तो वो भी ले पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक लाइव प्रयोगशाला होगी, जैसे कि लेबोरेटरी कहते हैं, किताबों के बजाय किसानों को खेतों पर सीधे नई और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा, जिससे कि वो उसका लाभ सीधे सीधे अपने खेतों को इसका लाभ वो खेतों से ले पाए। आधुनिक सुविधाएं होंगी, केंद्र पर 25 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल होंगे और किसानों को मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि अभी मंत्री जी ने बताया कि 1-55-261 के जरिए कृषि से जुड़ी समस्याओं का वो समाधान पा सकते हैं।
2: बिल्कुल, और ये कृषि विज्ञान केंद्र, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें। और देखिए, केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र ने जीविका से आगे बढ़कर तकनीक संचालित आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। किसानों की आय सुनिश्चित करने, लागत कम करने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में कृषि विकास और किसान कल्याण की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित PM किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, PM किसान मानधन योजना, और इसके अलावा उन्नत तकनीक और डिजिटल क्रांति ने भी बहुत कुछ आगे इस तकनीक को सशक्तिकरण दिया है। छोटे किसानों तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कृषि सलाह और बाजार की जानकारी मोबाइल के जरिए पहुंचाई जा रही है, और इस उन्नत तकनीक से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं जैसे PM कुसुम योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, महिलाओं को कृषि में आधुनिक ड्रोन तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे खेती की निगरानी और उर्वरक है उनका छिड़काव आसान हुआ है। इसके अलावा उपज मूल्य और सुरक्षा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों की आय बढ़ा

0: के लिए किसान फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना यानी 1.5 तय किया गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से विपरीत मौसम के कारण होने वाले नुकसान पर करोड़ों किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इस तरह से तमाम बहुत सारी चीज़ें, बहुत विकास हुआ है पिछले 12 वर्षों में। उसी से संबंधित एक आपको वार्ता सुनाते हैं, सरकार के 12 साल कृषि विकास के। इस वार्ताकार है अनिल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार।
1: दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे रहे हैं जो केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीता 12 वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है। इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया तो वर्तमान युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। इस कालखंड में केंद्र की राजग सरकार ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। इस कालखंड की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही है कि सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज तक नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया है। वर्तमान समय को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती है। भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, G20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने का प्रश्न हो, भारत ने हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया इसकी आर्थिक प्रगति रफ्तार को आंकते हुए समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है। इन 12 वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। शासन की पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया है। भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। बीते 12 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि एक नए दौर में पहुंच गई है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि देश में अनाज की कमी न हो और कोई भी आदमी भूख से पीड़ित न रहे। आज किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र तक सीमित न रहकर किसान की समृद्धि, जोखिम सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियां फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित है। इसी सोच से दलहन तिलहन मिशन, काटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धन धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध नवाचार सबको व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3,765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने किसान की जोखिम सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के जरिए किसानों के खाते में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि और संरचना, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया है। दालें, खाद्य तेल और कपास जैसे क्षेत्रों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय दलहन तिलहन और काटन मिशन इस दिशा में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य है किसानों को उत्पादन के साथ साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके। रासायनिक तत्वों पर बढ़ती निर्भरता, मिट्टी की दुर्बलता और भूजल पर दबाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज कर इनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। असमानता को दूर करने के लिए पीएम धन धान कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले जिले चिन्हित किए गए हैं जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को जोड़कर उन्हें समग्र पैकेज में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक,

0: तूफान को प्रभावी बनाने के लिए 8 ट्रेस्ट स्कीमर, 28 नावे, 28 जीसीबी मशीनें, 84 लोक निर्माण विभाग की मेंटेनेंस वैन और एक एम्बुलेंस तैनात की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ यमुना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ माँ के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का पहला चरण 22 जून को डिजिटल शुभारंभ के साथ शुरू होगा। दूसरा चरण जुलाई के पहले सप्ताह में मेगा रिज वृक्षारोपण अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जुलाई के मध्य में तीसरा चरण होगा, जिसमें जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पे पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अभियान को सफल बनाने के लिए वृक्ष रथ चलाए जाएंगे। ये रथ कॉलोनियों, आवासीय परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त पौधे पहुंचाएंगे। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभियान के तहत ई फॉरेस्ट, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, वृक्ष रथ, जियो टैग पौधारोपण और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले पर्यावरण रक्षक प्रमाण पत्र जैसी पहले शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों की भागीदारी और आसान तथा प्रभावी बनेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी के विकासपुरी में एक नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह आधुनिक सुविधा दिल्ली के नागरिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री संधू ने कहा कि यह सुविधा हजारों स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच और सुरक्षित तथा तेज प्रसंस्करण को सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी क्षेत्र से विधायक डॉ पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली

0: नगर परिषद संस्थानों में आधार नामांकन की सुविधाओं को जन्म पंजीकरण सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
1: आधार के माध्यम से नवजात शिशुओं के लिए नई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब एनसीडीएस एनडीएमसी में नवजात शिशुओं के जन्म पंजीकरण के साथ आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे नवजात बच्चों के जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का जोड़ना संभव होगा।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो मंडे पहल के तहत आज मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की और उसके बाद स्कूटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस अवसर पर श्री सूद ने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया कि वे पेट्रोल और ईंधन बचाने के लिए मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो से सफर करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
2: राज्य सरकार ने सोमवार को मेट्रो मंडे का दिन दिया है, अपने सब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का भी निर्णय किया है। अगर उसमें से 25% पैसा वे लोग अपने मेट्रो कार्ड में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि हम ईंधन को बचाएं, इसको राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मैं हर मंडे सफर करता हूँ।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सवेरे लखनऊ से पहुंची। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज शास्त्री नगर में स्थित एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मॉनसून से पहले तैयारियों का आकलन करने के लिए इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हैं जिससे वर्ष 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
5: हमारा प्रशासन व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। तो सारे बैराज से सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पर रहती है। तो हर स्थिति से सरकार हमारी तैयार है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज

0: दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से पहले कल विशेष योग कार्यक्रम के लाइव योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से युवा नागरिकों को शासन नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की समझ प्राप्त होगी। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों से देश और आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वन नेशन वन कार्ड योजना, लाखों लोगों को मुफ्त राशन और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर लोगों, खासकर बुजुर्गों से ठगी करने वाले एक फर्जी बीमा गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी पहचान को छिपाते थे और खुद को विभिन्न बीमा कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 3 कीपैड मोबाइल और 7 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइन माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में कल भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें हुई शुरू और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की।

0: डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की भू आधारित आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मिसाइल ने अपनी सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सुबह लखनऊ से आई। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रूपये की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आनंद फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज़ में, और आप जुड़े हुए हैं गीत मालिका से, और कार्यक्रम में खूबसूरत गीतों के नगमे जारी हैं आप सभी के लिए। आप भी हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर ip.radio@gmail.com पर, हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल अगला गीत लेते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साथ में आशा भोसले।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। और कसमों की बात अगर करें तो भाई कसम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर खा ली जाए तो लगता है बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार कसमें और वादे ना टूट भी जाते हैं। और इस पर कुछ लाइंस अगर कहना चाहूँ तो, तेरी याद की कसम भूल जाना मुमकिन नहीं, तेरी याद की कसम भूल पाना तुझे मुमकिन नहीं, लेकिन हर सांस के साथ साथ तेरा नाम मेरे साथ चलता है, और इससे ज़्यादा मोहब्बत को जताना मुमकिन नहीं।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कि ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो जो आपका हम सफ़र है, जो आपका दोस्त है, भाई गम जो है वो आधा आधा बांट ले, खुशी जो है वो बांट ले, तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो आसान बन जाती है। ये गीत रहा आज़ाद फिल्म से किशोर कुमार और लता की आवाज़ में, संगीत दिया आढ़ी बर्मन ने।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

ऊंघ जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: ये कसम कसम से लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

आशा भोसले की आवाज़ में, साथ में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गीत सुना। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें, हमें इंतज़ार रहता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

जी हाँ दोस्तों, रूठना भी उसी का हक है जिसे भाई मनाना ज़रूर आता हो, वरना खामोश फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। तो रूठे भी तब जब मनाने के लिए कोई हो या फिर आपको मनाना आता हो।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म अनजाना से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से और कार्यक्रम गीत मालिका है। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात की 8:40 हो चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत लता मंगेशकर की और मुकेश की आवाज़ में ही। और ये जो गीत है, उम्मीद करते हैं आप सभी पसंद करेंगे। इस गीत को लिया गया फिल्म अनाड़ी से। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को इस कार्यक्रम से अनुमति दें। हम आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप H के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप

0: वर्टिसे। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है। यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत

0: आने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैटिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज़ के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया।

به دشت بی کسی ها چون غبار.

0: मैं पत्र लिख रहा था, मन नौमे मीनवेष्टम। वे गाना गा रहे थे, ईशन आवाज मी खोंदंत। जीवन बीत रहा था, जीवन यानी जिंदगी, बीत रहा था मी गुजाश्त, बीतना यानी गुजाश्तन। जीवन बीत रहा था, जिंदगी मी गुजाश्त। तुम सपना देख रहे थे, सपना यानी ख्वाब, रूया। तुम सपना देख रहे थे, शुमा ख्वाब मी दीदीद, देखना यानी दीदान। हम जा रहे थे, मौ मी राफ्तीम। वह क्या बेच रहा था, बेचना यानी फुरुख्तान, बेच रहा था मी फुरुख्त, क्या यानी ची। वह क्या बेच रहा था, ऊची मी फुरुख्त। वह आम बेच रहा था, आम यानी अंबे, ऊ अंबे मी फुरुख्त। देर हो रही थी, दीर मी शोत। मिठाई बन रही थी, शीरीनी तहये मी शोत। बन रही थी तहये मी शोत, मिठाई शीरीनी। मैं पढ़ता था, मैन मी खोंदम। हम पढ़ते थे, मौ मी खोंदीम। मैं पढ़ रहा था, मैन मी खोंदम। हम पढ़ रहे थे, मौ मी खोंदीम। तू पढ़ता था, तुमी खोंदी। तुम पढ़ते थे, शोमा मी खोंदीद। तू पढ़ रहा था, तुमी खोंदी। तुम पढ़ रहे थे, शोमा मी खोंदीद। वह पढ़ता था, उमी खांद। वे पढ़ते थे, ईशान मी खांदांत। वे पढ़ रहा था, उमी खांद। वे पढ़ रहे थे, ईशान मी खांदांत। हल बियाइम बे मुअन्नस, इन बुद मुज़क्कर। मैं पढ़ती थी, मैन मी खांदाम। हम पढ़ती थी, मौ मी खांदीम। मैं पढ़ रही थी, मैन मी खांदाम। हम पढ़ रही थी, मौ मी खांदीम। तू पढ़ती थी, तो मी खांदी। तुम पढ़ती थी, शोमा मी खांदीद। तुम पढ़ रही थी, तू पढ़ रही थी, बेबख्शी तो मी खांदी। तुम पढ़ रही थी, शोमा मी खांदीद। वह पढ़ती थी, ऊ मी खांद। वे पढ़ती थी, ईशान मी खांदांत। वे पढ़ रही थी, उमी खांद। वे पढ़ रही थी, ईशान मी खांदांत। हमीन तोर मिसाल हो ये दीगरीस्त। मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करती थी। हम पढ़ा करते थे, हम पढ़ा करती थी। तू पढ़ा करता था, तू पढ़ा करती थी। तुम पढ़ा करते थे, तुम पढ़ा करती थी। वे पढ़ा करता था, वे पढ़ा करती थी। वे पढ़ा करते थे, वे पढ़ा करती थी। इन शोद बयान उमी खांद या मिसाल हो ये मुख्तलिफ बे ज़बान हिंदी दर माउनी इन जुमले फारसी के चंदीन मानी दौरद। اینجا درس بیستم شنوندگان عزیز به زبان هندی تمام میکنیم تا درس آینده خدا حافظ شما.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's historic visit to Slovakia, strengthening India's engagement with Central Europe. The participants are Anil Wadhwa, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: India and Slovakia have a 3-decade-long bilateral relationship, and the visit of Prime

0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो ना, सुनो तो।

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियो पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियो पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय

0: The government will also provide a 5% interest subvention and monthly fuel vouchers for 5 years. With the aim of reducing vehicular pollution, the scheme will encourage owners of the BS4 and older trucks and buses registered in the Delhi NCR region to replace them with cleaner BS6 compliant or electric vehicles. In cricket, India A suffered a defeat to Sri Lanka A in a super over thriller in the 50-over tri series yesterday. India A scored 265 runs in 49.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सबसे पहले ये गीत सुनते हैं फिल्म भक्त सूरदास से खुर्शीद की आवाज में।

गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म आर पार से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मुनीम जी से, गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बहार कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, ये सुनते हैं सबसे पहले ये गीत फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हां, असमिया से हिंदी होने तक जरूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की जबान के वो छोटे छोटे नुएंसेस अनुवाद हो सकते। जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए मांझी की बात करते हैं।

ब्रह्मपुत्र को वहां लोक गीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया मांझी सब जगह पहचाना जा सकता है, और उसकी बावली रमणी वो तो कहीं भी पहचानी जाएगी। भूपिंदा उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 5 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 88। 6:55 पर आप संस्कृत न्यूज सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 8:30 का समय होगा उर्दू समाचारों का और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे स्वर गंगा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर

0: रेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केटप्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना और विदर्भ में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
1: AI का भविष्य केवल innovation से नहीं, बल्कि trust, responsibility और human dignity पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और strategic convergence का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं।